सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58.46 हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कहते हैं जब मन में श्रद्धा का दीपक जलता है तो जीवन का हर अंधकार दूर होने लगता है। गुरु का सानिध्य हमें सही राह दिखाता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को नई दिशा देता है। तो आइए इसी पावन भावना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस पहले भजन से, जो समर्पित है उस सद्गुरु को जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं।

श्रोताओं, जब गुरु कृपा का प्रकाश जीवन में उतरता है तब हर कठिन राह भी सरल लगने लगती है। इसी भक्ति भाव को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है उस प्रभु के स्मरण की, जिनका नाम मात्र ही मन को शांति और हृदय को सुकून से भर देता है। कहते हैं, ईश्वर का नाम किसी एक का नहीं, हर नर नारी का सहारा है। तो आइए पूरे मन से साईं बाबा का स्मरण करें।

साईं भक्ति की इस मधुर प्रस्तुति ने मन को असीम शांति और विश्वास से भर दिया। सच ही कहा गया है कि जब मन ईश्वर के नाम में रम जाता है तो जीवन की चिंताएं स्वतः ही हल्की लगने लगती हैं। कार्यक्रम वंदना में अब समय है एक ऐसे प्रेरणादायक शब्द का जो हमें बताता है कि सच्चा संन्यास केवल वस्त्र बदल लेने में नहीं बल्कि मन के विकार अहंकार लोभ क्रोध और मोह का त्याग करने में है। तो आइए गुरुवाणी के इस अमूल्य संदेश को आत्मसात करते हैं।

वंदना कार्यक्रम में हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनते हैं एक बेहद भावपूर्ण नात जो अल्लाह की रजा, हजरत मोहम्मद साहब की मोहब्बत और तैबा की हाजिरी की तड़प को बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। तो आइए सुनते हैं ये नात।

इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। संगीतबद्ध किया है सतीश भाटिया ने और समूह स्वर में

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में श्री रामचरितमानस गान की ये संगीतमय प्रस्तुति, जिसे संगीत में पिरोया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा चिंतन।
1: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं, मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी न टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी न जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 होने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री संजीव शर्मा एकल का सावन पर विशेष काव्य पाठ।
2: मित्रों, सावन का महीना आते ही बारिश, बादल, पानी, नदियां, पर्वत, फूल, घाटियां और मानवीय संवेदनाएं सभी प्रज्वलित होने लगती हैं, मुखरित होने लगती हैं और प्रकृति अपना श्रृंगार करने लगती है। मैं दोहों के माध्यम से आरंभ करने जा रहा हूं।

एक और रूप बारिश का, कि एक बारिश ऊपर भई एक मन भीतर होय बिरहन की।

और देखें कि बारिश का भ्रम जाल है, बारिश का भ्रम जाल है, मौसम की है चाल, बारिश का भ्रम जाल है, मौसम की है चाल, साजिश

तो श्रोताओं, इन दोहों के साथ साथ सावन का स्वागत करते हुए एक सौंदर्यमय गीत आपके समक्ष रख रहा हूं।

इस सौंदर्यमय गीत के बाद एक और गीत मैं बताना चाहता हूं कि एक स्त्री जिसका पति बेरोजगार है और वो सावन की ऋतु आ गई है, तीजों का त्योहार आ गया है, वो अपने मन की व्यथा को किस तरह से वर्णन कर रही है कि अरिभिन्ना भूखे ही सोवे सारी रात, कहूं तो जग में मैं बुरी, और हमरा बलमा दिन निकले ही घर से बाहर जावे,

के घेवर खावे सारी दुनिया, घेवर खावे सारी दुनिया, यहाँ रोटी ना भात। अरे भेना किस किस से कहवे घर की बात, कहूं तो जग में मैं बुरी। और अंतिम बंद में क्या कह रही है वो, कि और मुए बात।

0: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री संजीव शर्मा एकल का सावन पर विशेष काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं, अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10 वर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: राज्यसभायां 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु 3 वर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघ स्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावड़यात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है बच्चों के दांतों की देखभाल।
4: कभी कभी बच्चों के दांत आपको तुरंत जन्म के बाद भी दिखते हैं, जिसे न्यूनेटल टीथ कहा जाता है। वैसे सामान्यतः बच्चों के दांत 6 माह के अंदर आ जाते हैं। यदि आपके बच्चे के दांत 1 साल तक ना आए तो अपने निकटतम दंत चिकित्सक को दिखाएं। इसका मतलब है जरूर कुछ परेशानी है जिसका निवारण होना चाहिए। ये काफी कम लोगों को ये चीज पता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर मुंह में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे पायरिया हम कहते हैं, तो जल्दी ही बच्चे का जन्म हो सकता है। जैसे बच्चे का जो वेट है वो बड़ा कम रहता है, इससे बच्चे का डेवलपमेंट और उसके दांतों से लेकर उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। इसलिए खासकर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। अपने मुंह की अच्छी सफाई करनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, पायरिया की परेशानी ना हो, ताकि जो उनका गर्भ अवस्था का जो काल है वो पूरा 9 महीने का ही रहे। देखिए, सबसे जो कॉमन समस्या है वो देखी जाती है, वो कीड़ा लगना देखा जाता है। और खासकर जो छोटे बच्चों को हम लोग बहुत ज्यादा आदत होती है कि उन्हें बोतल के साथ सुला दिया जाता है, दूध की बोतल के साथ, तो दूध की बोतल में जो चीनी होती है और दूध में खुद जो लैक्टोज नामक एक शुगर होती है, वो रात भर बच्चों के दांतों और मसूड़ों और उनके ऊपर लगी रहती है, जिससे कि पूरी रात भर जो कीड़े लगने की प्रक्रिया है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इन बच्चों में 1 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर सारे ही दांत बिल्कुल चूरा चूरा होके टूटने लगते हैं। और जब तक बच्चा अपने पहले वर्षगांठ तक पहुंचता है, पहले दूसरे साल तक पहुंचता है, तकरीबन सारे ही दांत उसके टूट जाते हैं। तो इस अवस्था को नर्सिंग बोतल केरीज कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को आप बोतल जो है 6 महीने के बाद उसको पीने के लिए उत्साहित ना करें और उसे कब से पिलाना शुरू करें, ताकि दांतों को आप ध्यान रख पाएं और आगे परेशानी ना हो इस तरह की। दूसरी जो मुख्य परेशानी है वो है कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा आ जाना है। अब हम लोग जो दूध के दांत हैं उनकी ज्यादा सुरक्षा नहीं करते हैं, सोचते हैं कि दोबारा से पक्के दांत तो आ ही जाने हैं। तो दूध के दांतों के क्या महत्व है इसका जानना बड़ा जरूरी है। जो दूध के दांत हैं अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है, तो नीचे जो पक्के दांत आपके आ रहे हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो आगे चल के जब बच्चे के नए दांत आएंगे तो वो टेढ़े मेढ़े आएंगे, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और स्वतः उनको भी निकालने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अगर हम दूध के दांतों को सही तरीके से ध्यान रखें तो नीचे जो पक्के दांत आ रहे हैं वो सही समय पे भी आएंगे और सही तरीके से भी आएंगे। तो आगे माँ बाप के ऊपर भी जो पैसे को भार पड़ जाता है ट्रीटमेंट को लेके, जो बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, वो आप सिर्फ दांतों की सफाई करने से बच सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चे जिन्हें मिर्की की परेशानी है वो कुछ दवाइयां लेते हैं जिसे हम ड्रग इंड्यूस एनलार्जमेंट कहते हैं। तो कुछ दवाई जैसे इसमें कॉमन ज्यादातर फिनाटोइन दी जाती है मिर्की के दौरों में, तो उसमें मसूड़ों की बहुत जल्दी बढ़ोतरी हो जाती है और मसूड़े काफी बड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो अगर ये चीज हम पहले से ध्यान रखें और उनको समय समय पर दिखाते रहें तो इस चीज को हम पहले ही रोक सकते हैं। दूसरी मेन परेशानी ये होती है कई बच्चों के तालू और ऊंट कटा हुआ होता है जन्म के समय पे ही, उस समय भी दांतों का जो निकलने का एक तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो इसमें आपको एक डेंटिस्ट की बड़ी जरूरत पड़ती है, ताकि जो दांत आपके निकल रहे हैं बच्चे के वो प्रॉपर तरीके से निकल पाए और उसे परेशानी ना हो। बाकी दांतों में इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जन्म के तुरंत बाद कई बच्चों के दांत होते हैं जिन्हें न्यूनेटल टीथ कहा जाता है, तो उसको तुरंत निकालना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये दांत सिर्फ मसूड़े पे लटके हुए होते हैं और इनसे गले में जाने का इनका बड़ा ज्यादा चांस होता है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो बच्चों में ज्यादा परेशानी नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या चीज है कि बच्चों में कई आदतें होती है, जैसे अंगूठा चूसना, जीभ से धक्का देना दांतों को, तो इससे दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अगर ये आदतें हम पहले बच्चों की पकड़ लें तो आगे जो भी परेशानी आने वाली है वो हम रोक सकते हैं। इसका सिर्फ एक उपचार है कि हमें जो दूध के दांत है उनका महत्व समझना है। दूध के दांत क्या करते हैं कि नीचे जो आपके पक्के दांत आ रहे हैं उनको एक रास्ता दिखाते, एक मार्गदर्शक होते।

0: खुद भी निकाल सकते हैं समय के साथ। और अगर आपको लगता है कि दांत में परेशानी हो रहे, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अपने निकटतम दंत चिकित्सक से मिलें, जो कि एक बहुत ही मामूली सा एक प्रक्रिया होती है, जहाँ ना इसमें ज़्यादा बड़ा घाव बनता है और जल्दी ही घाव भर भी जाता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। चर्चा का विषय था बच्चों के दांतों की देखभाल। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है औषधीय पौधों की खेती। तो किसान भाइयों देखिए, यदि हम परंपरागत खेती के अलावा कुछ ऐसी फसलों की खेती करें कि जिनमें बाजार की मांग अच्छी हो और आजकल की ज़रूरत हो और उसके दाम भी अच्छे हों, तो यदि हम औषधीय पौधों की बात करें तो औषधीय पौधों की निरंतर मांग बढ़ रही है, क्योंकि भैया जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और आप जानते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और हम चीन को पछाड़कर विश्व में प्रथम स्थान पर जनसंख्या में आ गए हैं, तो हमें इस प्रकार की खेती करनी चाहिए कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़। और औषधीय पौधों की बात करें तो औषधीय पौधों में नीम, तुलसी, घृत कुमारी यानी एलोवेरा और अश्वगंधा, अर्जुन, इस प्रकार के पौधे आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम तुलसी की बात करें तो तुलसी की दो मुख्य प्रजातियां होती हैं। एक होती है भैया श्वेत तुलसी और दूसरी होती है कृष्णा तुलसी। तो श्वेत तुलसी के पौधे हरे और सफेद रंग लिए हुए होते हैं और जो कृष्णा तुलसी होती है भैया उसके पौधे हल्का सा बैंगनी कलर लिए हुए होते हैं और तुलसी के पौधों की लंबाई 1 फीट से 3 फीट की होती है। यदि हम बात करें तुलसी की तो तुलसी भैया रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी बढ़वार करती है, तो रेतीली दोमट मिट्टी में इसकी हमें बुआई करनी चाहिए। और इस के बीज के लिए यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 100 ग्राम बीज तुलसी का पर्याप्त होता है 1 एकड़ खेत की बुआई के। और यदि हम एलोवेरा या घृत कुमारी या घी कुमार की बात करें तो ये भी अनेक रोगों में और त्वचा रोगों में और हमारे जो रक्त संचार है उसमें काम देता है, तो इसकी पत्तियों की रोपाई भी हम लगभग 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर कर सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ये भी एक गर्म जलवायु का पौधा है और सर्दियों में इसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी रोपाई का सही समय उस वक्त माना जाता है जब 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तब इसके पौधे अच्छी बढ़वार करते हैं। और यदि हम नीम की बात करें तो नीम और अर्जुन ये ऐसे वृक्ष हैं कि नीम का पौधा तो हमें चर्म रोग और जो हमारे रक्त संचार और रक्त की शुद्धियां होती हैं उसमें काम देता है। नीम की पत्तियां, नीम की निमौली और खेती में भी इसका लाभ होता है। ये खेत के जो कीड़े होते हैं दीमक वगैरह उसको समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में हम बेच सकते हैं। अर्जुन की छाल हृदय रोगियों के लिए रामबाण औषधि है, तो नीम और अर्जुन के हम पौध लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं और इसके लिए कोई विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और यदि हम पुदीना और दूसरी जो औषधीय पौधे जैसे अश्वगंधा होती है इनकी बात करें तो अश्वगंधा और पुदीना के जो पौधे होते हैं इनकी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और अश्वगंधा की खेती करने से तो बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अश्वगंधा बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती है और इसका विशेष रूप से महत्व होता है। साथ में हम ब्राह्मी और शंख पुष्पी जैसे औषधीय पौधों की खेती भी इनके साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन इन औषधीय पौधों की खेती करने के लिए अर्जुन और नीम को छोड़कर हमारे किसान भाई ये जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं जिनको झाड़ी नुमा हम श्रेणी में रखते हैं, तो उनके लिए जल निकास की पर्याप्त आवश्यकता होती है। और भैया इसमें जीवांश युक्त मिट्टी यानी कि गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ी हुई चाहिए और तभी गोबर की खाद प्रयोग करने के बाद ही इन औषधीय पौधों की हम बुआई करते हैं, तभी अच्छा रहता है। और भैया एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा में रोग और कीट प्रकोप नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक गुण होता है जिसके कारण कीट और रोग इसके पास नहीं आते। तो इस प्रकार से किसान भाई यदि औषधीय पौधों की खेती करें तो उन्हें बहुत अच्छी आमदनी होती है और उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि होती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरता है और परिवार की समृद्धि और खुश।

0: बढ़ती है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संसद समीक्षा का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कंट्री वाइड और इनसाइट्स आप सुनेंगे रात 9:30 पर। और रात्रि 10 बजे प्रसारित की जाएगी संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम जिले की हलचल का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:15। इस कार्यक्रम में आज महोबा और गोरखपुर जिले की हलचल पेश की जाएंगी। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। बहनें अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत सुन सकेंगी दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ताकार नूतन वर्मा की वार्ता का विषय रहेगा देशाटन में महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी हर रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसके अंतर्गत आज एक वार्ता प्रस्तुत की जाएगी। विषय होगा ज्ञान संस्कृति एवं सामाजिक विकास का आधार पुस्तकालय। वार्ताकार होंगी फरहीन। आज शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज किसान भाइयों से चर्चा का विषय रहेगा दूध धोते समय सावधानी। साथ ही जानसठ मुजफ्फरनगर में तैनात उप पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्नेहल निर्वाण से सुवेंद्र सिंह की भेंट वार्ता भी किसान भाइयों को सुनने को मिलेगी। विषय होगा पशुओं में गलघोटू रोग, कारण लक्षण व बचाव। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। इस कार्यक्रम में आज बातें होंगी मशहूर संगीतकार जयदेव की। श्रोताओं, यह था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।
1: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: इस बीच राज्यसभा ने भी कल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
4: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
5: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है, और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो हर आपात स्थिति में मुझे सुना लेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां विशेष व्यवस्था की गई है।
6: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी, और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नान सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
0: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में प्रदेश के गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बदायूं जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में

0: परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह की नई रोशनी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। मैं हूं आपका दोस्त नमित राज। श्रोताओं, सुबह सुबह की ये रोशनी हमें ये संदेश देती है कि अंधेरा भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। आइए इसी सुविचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज 30 जुलाई है और आज के दिन को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, मानव तस्करी एक ऐसा शब्द है, शायद हम में से काफ़ी लोग इस शब्द का मतलब भी ठीक से नहीं जानते होंगे। आपने कभी गौर किया है दोस्तों, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या इसके अलावा भी बहुत सी पब्लिक प्लेसेस पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। छोटे शहरों में तो अमूमन ये बच्चे ज़रूरतमंद ही होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कहीं और से लाकर जबरन इस तरह का काम कराया जाता है, उनसे मजदूरी करवाई जाती है। और यही नहीं, लड़कियों को धोखे से या कोई लालच देकर या कोई डर दिखाकर उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है। बच्चों, महिलाओं और तो और गरीब पुरुषों को भी अपने लालच के लिए उनकी खरीद फरोख्त करना और उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेलना, ये सब मानव तस्करी कहलाता है। ये एक बेहद घिनौना अपराध है जिसके बारे में जागरूक करने के लिए ही आज का ये दिन मनाया जाता है। श्रोताओं, इसलिए यदि कोई संदिग्ध गतिविधि कहीं दिखाई दे, किसी बच्चे या व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि सरकार या पुलिस के साथ साथ ये समाज के हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। नैतिकता यही कहती है मेरे दोस्तों कि जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपस में अपनापन और दोस्ती बनाकर रखिए, क्योंकि दोस्ती के बारे में किसी ने कहा है कि सच्ची दोस्ती लकीरों की मोहताज नहीं है, जिसे निभाने का हुनर आता है वही दोस्त खास हो जाता है। वाकई ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिससे हम दिल की हर बात बिना सोचे समझे कह सकें, जो हमारी खुशी में हंसता हुआ शामिल होता है और हमारे गम में उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वही तो होता है सच्चा दोस्त। और दोस्ती का ये रिश्ता होता है सबसे खास। इसी खूबसूरत रिश्ते को समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जिसे हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। यानी श्रोताओं, आज ही के दिन ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने इस सोच के साथ की थी कि दोस्ती सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि अलग अलग देशों, अलग अलग संस्कृतियों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसे भी हम दोस्ती कह सकते हैं। ये तो हुई दोस्ती की बात, लेकिन आप ज़रा हमें ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम अपने दोस्त का हालचाल कब पूछा था। मेरे भाई, अगर बहुत दिन हो गए ना, तो ये दिन एक मौका है अपनी दोस्ती को रिचार्ज करने का। एक छोटा सा मैसेज या एक छोटी सी प्यारी सी कॉल, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। और अगर ऐसा है कि वो करीबी दोस्त इस वक्त आपके साथ ही है और आप दोनों इकट्ठे बैठकर हमें सुन रहे हैं, तो अपने दोस्त को कह दीजिए भाई कि यार तू है तो ये ज़िंदगी और भी मज़ेदार है। तो आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है दोस्तों, खुलकर अपने बिछड़े दोस्तों से बातें कीजिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं और उनके साथ को आप कितना एंजॉय करते हैं। और फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गीत को जो हम आपके और आपके दोस्तों के लिए प्ले कर रहे हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और भोले बाबा की भक्ति में हर कोई डूबा है। सड़कों पर बोलबम के जयकारे भी गूंजने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो और भी ज़्यादा आपको इस तरह के जयकारे सुनने को मिलेंगे, और भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उन्हें सतर्क रहना पड़ता है और कांवड़ियों को असुविधा ना हो इसके लिए जगह जगह पर प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। तो ये वो समय है जब हम सभी को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, कहीं भी आपको अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए काम तो नहीं रुकता ना, तो जाना तो पड़ेगा। तो यदि आपको कहीं जाना है तो पहले से ही ये जानकारी हासिल करके चलें भाई कि ट्रैफिक को कौन से मार्ग से निकाला जा रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कोई डाइवर्जन तो नहीं है। ये थोड़ी सी जानकारी यदि हम लेकर चलेंगे तो हम जाम की समस्या से भी बचेंगे और किसी तरह की परेशानी हमें नहीं होगी। साथ में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे अगर किसी और को असुविधा होगी तो वो भी नहीं होगी। तो बिना जानकारी के यात्रा शुरू ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे मार्गों को पूरी तरह से बंद किया गया है। कुछ मार्गों पर हल्के मोटर वाहन ही निकल सकते हैं, भारी वाहनों को वर्जित किया गया है। तो आपकी थोड़ी सी समझदारी न केवल आपकी यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि शिव भक्तों की यात्रा भी सुरक्षित और सुचारू बनी रहेगी। तो इस ओर आपको ध्यान देना है श्रोताओं, जो भी मार्ग बदले गए हैं उनका सही से पता करके ही घर से कहीं जाना है। और जो भी मार्ग बदले गए हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स का अवलोकन करके और प्रशासन की जो गाइडलाइन दी गई है उसे फॉलो करके। ठीक है, तो ये थी छोटी सी चर्चा कि हमें क्या करना चाहिए इस दौरान और किस तरह से हमें सहूलियत होगी। अब कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में अगला सेगमेंट का रुख करते हैं। सेगमेंट है फिल्मी सफ़र। तो दोस्तों, आज के फिल्मी सफ़र सेगमेंट में हम बात करेंगे उस गायक की जिसकी आवाज़ में कभी प्यार की मिठास है तो कभी जुदाई का दर्द, कभी देशभक्ति नज़र आती है तो कभी दिखता है ढेर सारा मोटिवेशन। ये गायक कलाकार हैं सोनू निगम साहब। महज 3 साल की उम्र में मंच पर गाना शुरू करने वाले सोनू निगम ने अपनी मेहनत और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर भारतीय संगीत जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया था। सारेगामा जैसे लोकप्रिय संगीत कार्यक्रम की मेज़बानी से लेकर बॉलीवुड के हज़ारों यादगार गीतों तक उन्होंने हर अंदाज में श्रोताओं का दिल जीता। आज फिल्मी सफ़र सेगमेंट के अंतर्गत हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि आज 30 जुलाई को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 1973 में 30 जुलाई को ही फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ था। सोनू निगम को प्रतिभा का धनी माना जाता है, क्योंकि हर तरह की गायकी में वो अपने आप को साबित करते हैं। वो अपना आइडल मानते हैं सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब को। शायद यही वजह है कि सोनू की गायकी में कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की झलक दिखाई देती है। सोनू निगम 32 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गा चुके हैं और इन गानों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। उनके नाम नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, आइफा अवार्ड, न जाने कितनी ही बार उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। एक फिल्म आई थी कल हो ना हो, इस फिल्म के शीर्षक गीत के लिए सोनू निगम को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच ये है कि

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में अब सेगमेंट है तिथि विशेष। सेगमेंट तिथि विशेष में आइए श्रोताओं जानते हैं कि आज की तारीख 30 जुलाई को इतिहास की किन प्रमुख घटनाओं के लिए याद किया जाता है। साल 1886 में 30 जुलाई को ही देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह के विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। वो भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से भी एक थीं। उन्होंने कैंसर रोगियों की सहायता के लिए तत्कालीन मद्रास में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया था, जो आज भारत के प्रमुख कैंसर अस्पतालों में गिना जाता है। 30 जुलाई सन 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। ऑरविल राइट और विल्बर राइट नाम के इन भाइयों ने इस दिन राइट मिलिट्री फ्लायर को का सफल प्रदर्शन किया था। इस विमान ने 10 मील की उड़ान को तकरीबन 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया था। इस सफल परीक्षण के बाद इस विमान को अमरीकी सेना में शामिल किया गया और ये अमरीकी सेना का पहला सैन्य विमान भी बना। साल 2007 में 30 जुलाई को ही चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाऊ में करीब 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की थी। इन सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों में प्राचीन जलवायु और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले। इन चट्टानों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को हिमालय तिब्बत क्षेत्र के उत्थान और एशिया की जलवायु में हुए बदलावों को समझने में मदद मिली। साल 2012 में 30 जुलाई को ही भारत के उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर बिजली ग्रिड ठप हो गए थे, जिससे करीब 62 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। रेल, मेट्रो व कई सेवाएं रुक गई थी। इसे दुनिया के सबसे बड़े बिजली ब्लैकआउट में गिना जाता है। इसके बाद देश में बिजली ग्रिड व्यवस्था मजबूत की गई। साल 1971 में 30 जुलाई को ही नासा का अपोलो 15 मिशन चंद्रमा पर उतरा था। अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन ने चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए तथा पहली बार लूनर रोविंग व्हीकल चलाया। इस मिशन ने चंद्रमा के विस्तृत अध्ययन को नई गति दी। 30 जुलाई को ही साल 1887 में जन्म हुआ था ओडिशा के प्रसिद्ध साहित्यकार अर्टा वल्लभा मोहंती का, जो ओडिशा के प्रतिष्ठित रेवेनशॉ कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर रहे। उन्होंने प्राचीन ओडिया ताड़पत्र पांडुलिपियों को खोजकर उनका संपादन और प्रकाशन किया था, जिससे ओडिया साहित्य की अमूल्य धरोहर सुरक्षित रह सकी। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, ये थी वो अहम घटनाएं जो 30 जुलाई के इतिहास में दर्ज थीं। अब आइए रुक करते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों का। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास, अपमान पर अब होगी 3 वर्ष की जेल। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने वाला विधेयक लोकसभा में पास। नए विधेयक में पर्चा लीक करने, नकल या अन्य गड़बड़ियों के लिए सजा को कड़ा करते हुए 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने समेत कई सख्त प्रावधान शामिल। पहाड़ों पर आफत बना मौसम, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, हिमाचल प्रदेश में भी तबाही, ओडिशा में बाढ़ से 2 लाख प्रभावित, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। नशे के खिलाफ बड़ी जंग, पीएम मोदी 100 सप्ताह के अभियान का 2 अगस्त को करेंगे आगाज, 10,000 स्थानों पर 1 करोड़ युवा लेंगे नशा मुक्ति की शपथ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा, अब 120 प्रश्नों की 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर होगा चयन। उत्तर प्रदेश में 2,35,000 अपात्रों के राशन कार्ड होंगे निरस्त। सभी जिलों को एक सप्ताह में सत्यापन, फील्ड जांच और लंबित निरस्तीकरण के दिए गए निर्देश। मुक्केबाजों के पंच से पक्के हुए 9 पदक। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंचे। शॉटपुट में तेजिंदर पाल, तूर और समरदीप फाइनल में। और क्रिकेट में आईसीसी ने जारी की क्रिकेटर्स की ताजा रैंकिंग। शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट के शीर्ष बल्लेबाज बने। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने टी20 में लगाई 230 स्थान की छलांग और 48वें स्थान पर पहुंचे। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज के तिथि विशेष सेगमेंट में इतना ही। अब आइए एक बार फिर से संगीत की दुनिया में चलते हैं और आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने साथी नमित राज को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
4: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
5: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गयी। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
3: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने

0: लड़के भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 30-47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीत कर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 years इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। बिहार गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रीओपन क्लोज्ड शुगर मिल्स एट रयाम इन दरभंगा एंड सकरी इन मधुबनी। India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur Assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is progressing peacefully across all 422 polling booths of 164 polling stations in the Bankipur Assembly constituency. Polling will continue till 5 p.m. A traditional stronghold of Bharatiya Janata Party, the seat is witnessing a contest among 25 candidates this time. A total of 3,79,616 voters will decide the electoral fate of the candidates. Although the main contest is believed to be between BJP's Neeraj Kumar, Jan Swaraj's Prashant Kishore and Rashtriya Janata Dal's Rekha Kumari. The by-election was necessitated following the resignation of BJP's national president Nitin Naveen from the assembly seat. Counting is scheduled on 3rd August. Savita Parekh, Akashwani News, Patna.
2: Bihar government has decided to reopen the closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. A proposal to this effect was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Chaudhary yesterday. Briefing the media, Additional Chief Secretary

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुगरे अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद वसील ने चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं और फास्ट ट्रैक अदालतों के कयाम की तजवीज है। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। पब्लिक इम्तिहानात के दौरान गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 में कई अहम गुंजाइशों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और कसूरवार करार दिए गए अफराद की इमलाक जब्ती जैसे सख्त इल्तजामात शामिल हैं। यह कानून इस बात को लाजमी करार देता है कि हर रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर समाज के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करे। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान जेरिंग की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवजा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज हासिल हो जाएगा। इस मुजवजा कानून के जरिए कौमी ताजीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज पहुंच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की 164 पोलिंग स्टेशनों के सभी 422 पोलिंग बूथ्स पर पुरान तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस सीट पर 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कुल 379,616 वोटर्स उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। गुजरात की मांजलपुर असेंबली हलके के लिए

0: बीजेपी ने सतीश पटेल को जबकि कांग्रेस ने भीका भाई रबारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी के रुकने असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के सबब जिमनी चुनाव जरूरी हो गया था। इंतखाबी कमीशन ने 100% वेबकास्टिंग, पोलिंग मराकिस के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के काउंटर्स और ऑनलाइन जाब्ता अमल से मुतालिक शिकायतों के लिए सी विजिल सहूलतें मुतारिफ कराई हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को नाअहल करार दिए जाने के बाद दतिया सीट खाली हो गई थी। दतिया असेंबली हलके से चुनाव के लिए सभी 291 पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी इकदाम किए गए हैं और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहर अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल के अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रही। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि यह कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाज रानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निजाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा लेना था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के बाद मुल्क की आलमी मसाबिका आरई को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने मीटिंग के दौरान मजबूत मसाबिका आरई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निजाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नजरिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तिरा, स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी, MSMEs और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली में 22वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत को महारत की जानिब बढ़ना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मेयार, इख्तिरा और मुकाबला जाती सलाहियत के जरिए भारत में बनी हुई मसनूआत को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुकाम हासिल हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नजर रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज्यादा मुतासिर जिला बना हुआ है जहां हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वो नामजद करदा राहत कैंपों से बाहर न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में भद्रक जिला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है जहां जिले के 5 ब्लॉक्स में 322 गांव सैलाब के पानी में डूब गए हैं। पड़ोसी जिले जाजपुर में लबरेज हो चुकी बैतारानी और कानी नदियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद तौर से मुतासिर किया है जिससे नशेबी इलाकों में

0: पानी भर गया है। महानदी के बलाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सतहआब में इजाफा हो रहा है, जिससे दरमियानी दर्जे के सैलाब और नदी के ताश में पानी भर जाने का खदशा है। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात ने नौपाड़ा, कालाहांडी, नबरंगपुर और कोरापुर जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दीगर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नबरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इस मिथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमोदरफ्त, उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकामात पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क्स और जदीद मजबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में ट्रैफिक को मुंतकिल करने से मुतालिक इंतजाम को नाफिज किया गया है, ताकि कांवड़ियों और दीगर लोगों के बहिफाजत और खुश असलूबी से आने जाने को यकीनी बनाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ की डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक महीने के लिए राजधानी के कई रास्तों पर ट्रैफिक मुंतकिल किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर एनसीआर में मुसाफिरों की सहूलियत के मद्देनजर एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए रेलवे ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या में आला अफसरों ने राम की पैड़ी और नया घाट इलाके का मुआयना किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की सहूलियत और हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें जिगजैग की छाया, ग्लूकोज वाटर और ओआरएस तकसीम किए जाएंगे। अकीदतमंदों पर फूल भी बरसाए जाएंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: वजीराजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। ये नशावर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्ते तवील एक जन भागीदारी मुहिम है। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलेटिक्स में एक तारीख रकम की है और मर्दों के 100 मीटर T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
0: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म बहारें फिर भी आएंगी से ये खूबसूरत सा गीत। संगीत ओ पी नैयर का था और गीतकार थे अनजान। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बैराग से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के स्वर में फिल्म बॉबी से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी का ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्श की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब प्यार किसी से होता है के इस गीत में। शंकर जयकिशन ने इस गीत का संगीत तैयार किया था और बोल थे हसरत जयपुरी के। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का आज का ये अंतिम गीत, आइए सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से रविंद्र जैन का संगीत है और शब्द रचना भी रविंद्र जैन की है और इस गीत को स्वर दिया है हेमलता ने।

0: खुशबू से। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हेमलता के स्वर में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में जिले की हलचल पेश की जाएंगी।
1: सुनते हैं महोबा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
2: कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीर भूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंजगांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपना कर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैने ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जल स्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के 2 फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गांवों में काशीपुरा, धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सेवड़ी और सलैया गांव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्रय ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुंच रहा है। इन बांधों का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गांव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गांव में से 343 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका।

0: है, जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती है कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बम्हौरी काजी निवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है।
1: पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का।
3: 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे आम जन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
4: ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है, और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है, विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है।
3: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी, इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार अर्चना त्यागी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार अर्चना त्यागी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे कलाकार अर्चना त्यागी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे एक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ है मैं नमित राज और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी
1: मनोज वर्मा। तो मेरे सभी श्रोताओं को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त निकालते हैं, हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और इसके लिए कि आपको करना क्या है। वैसे तो नमित, हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि हमें किस नंबर पर व्हाट्सअप करना है ना, कि सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने श्रोताओं को एक बार नंबर फिर बता दें, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो 94-570-78-288 ये हमारा नंबर है और हमने हिंदी में बोला है, अंग्रेजी में आप बता दो नमित।
0: हमारा नंबर है श्रोताओं 9457078288। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी जो भी भेजी गई फरमाइश है उनको हम पूरा करेंगे। तो चलिए मनोज जी, देर ना करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो चुके हैं।
1: बिल्कुल, तो शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करेंगे हम SMS से। और हमारे पास जो है ना, ऐसे नहीं है कि हम SMS ही आपके पढ़ेंगे, हमारे पास में आपके खत भी हैं, खतों को भी हम शामिल करेंगे। तो पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे पसंद करने वाले हैं हमारे आप सब श्रोता। और देखिए, पहले श्रोता हमारे कौन खुश नसीब है, 10:01 पे ये मैसेज मुझे मिला है। ग्राम गधारोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी, बिमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गुंडाने के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से आप हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान के अलावा हमारे श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवड़े के साथ में आप हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़े हैं। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी नियमित श्रोता हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली के हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है हमारे नियमित श्रोता हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, कांठ रोड लदावली से और हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मगनपुर झारखंड के श्रोता हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, बेबी निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसके अलावा हमारे श्रोता देखे बिल्कुल अभी जुड़ गए हमारे श्रोता, बहुत शानदार हमारा ये मैसेज हमें मिलता है। हमेशा हम बोलते हैं हमारे कुछ श्रोताओं के मैसेज हमें बहुत खूबसूरत मिलते हैं, एकदम बोल्ड लेटर्स में मिलते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं लगता कि भाई वर्तनी की अशुद्धि है। रेलवे रोड गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम, जख्मी भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और उनकी भाभी सरिता गौतम भी इनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नियमित श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदराने हिना कौसर और ये मैसेज और मैं ले रहा हूं। देखिए हमारे श्रोता बहुत गजब का मैसेज हमें कर रहे हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप श्रोता भी हैं और नमित की बारी है
0: जी। ये संदेश जो हमें मिला है सनावत से हमें मिला है शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना जी का। अहमदपुर खैगांव खंडवा से आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग और तानिया नारंग। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अगला संदेश हमें भेजा है ऑरेंज सिटी नागपुर से, और फरमाइश करता है विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और सुराज विराज। ये मैसेज हमें मिला है छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती और इनके बड़े भाई हरिराम, दशरथ, अर्जुन, करण, अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज और इनके सभी साथी। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। इसी गीत के ख्वाहिशमंद बढ़ापुर बिजनौर से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं एम ताहिर, इदरीश हिलाल, जैन प्लांट देहरादून से संदेश भेज रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। लिखने वाले हैं मन भावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी बाई बागरी।
1: इसके अलावा इनका पूरा परिवार और नमित लगातार मैसेज मिल रहे हैं, ये मैसेज आप लीजिएगा।
0: कोल सिटी बरका काना से फरमाइश करता है अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कौर और मोहम्मद अफजाल मलिक। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से फरमाइश करता तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा।
1: सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संदेश से पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें आवाज थी कुमार सानू की और फिल्म का नाम था
5: जब प्यार किसी से होता है।
4: बिल्कुल, और ये मैसेज मैं ले रहा हूँ नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी के अलावा पूरा ही हाशमी परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी के अलावा आप जुड़े हैं हमारे साथ कुलम रोड, हरगोबिंद नगर, नवा शहर, पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स बीन के साथ हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं विनोद मूलक, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अरणव आनंद और सत्यम आनंद के साथ में पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं।

0: आदर्श सार्थक अलौकिक और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता आप भी हैं, ज्योति नगर नोखा राजस्थान के पुखराज बड़गुजर हाँ, कैलाश मिस्त्री गोवर्धन धरा, फरसा राम सोलंकी, श्याम लाल चौहान, घनश्याम भार्गव और बाबू गिरी, साथ में हसन सिक्का भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। नमित,
1: इस गीत को सुनना चाहते हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, साथ ही रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल की भी फरमाइश हमें मिली है इसी गीत के लिए। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से ये मैसेज हमें मिला है रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें मिला है मनोज जी, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और शिवन्या गोस्वामी का। दाऊद सराय सहारनपुर से आप हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। ये मैसेज हमें मिला है
0: भाई, इसमें नाम तो नजर आ नहीं रहा है लेकिन
1: फरमाइशकर्ताओं के नाम इसमें हैं।
0: सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा इनके साथ जुड़े हुए हैं। भाई नाम नहीं लिखा आपने और नाम भी लिख के भेजिएगा कि कहां से आप सुनना चाह रहे थे। नमित
1: जी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये मैसेज हमें मिला है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जयबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश करता हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा और जूट मिल रायगढ़ से डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार का ये मैसेज हमें मिला है। तो चलिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म जुदाई से अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये प्यारा सा गीत।

0: अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने सुना जुदाई फिल्म का ये गीत, और सिलसिला जारी है आपके एसएमएस मिलने का। तो अगला एसएमएस हम ले रहे हैं अगले गीत के लिए। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम ज्ञानपुरा से साबिर अली, नसरीन, काजोल और इनका पूरा परिवार। और कह रहे हैं कि साहब इतने मैसेज करते हैं, हमारे मैसेज शामिल नहीं होते हैं भाई, वक्त की भी किल्लत होती है ना, कई बार आप लेट मैसेज कर देते हैं। और देखिए 10:20 का ये मैसेज है, हमने शामिल कर लिया अगले 3 मिनट में, क्या बात है। चलिए इसी तरीके से जुड़े रहिएगा हमसे। और ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश के, ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन के अलावा अब्दुल्ला आजाद भी इनके साथ जुड़े हैं। और ये मैसेज मुझे मिल रहा है, हमारे श्रोता है नियमित तेलंगाना निजामाबाद के श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता भी हैं भाई, देखिए। और कई श्रोता हमारे क्या है कि फोटो खींच के भेज रहे हैं और इसमें हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन देखिए ये मुझे मैसेज भी मिला है। और ये जो जिसकी बात कर रहा था मैं कि फोटो खींच के भेजते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है और फोटो खींच के भेज दिया, तो ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है मौला धर्मदास नजीबाबाद का मैसेज है ये। गुलाम हसन, निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा। और ये मैसेज भाई ले रहे हैं हम कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेब, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और नाती मास्टर अल कबीर भी इनके साथ हैं। और ये हमारे श्रोता भाई नमित,
1: ये हमारे श्रोता ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से भेज रहे हैं संदेश, और नाम है इनके जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। मुंदीचक भागलपुर बिहार से ये संदेश हमें मिला है दिलीप कुमार सोनी का। आपकी फरमाइश भी, आपने भी इसी गीत की फरमाइश की है। और अगला मैसेज जो हमें मिला है वो मिला है चौखुंटी बुलंदशहर से, फरमाइश करता है सईद टपारिया, निगट टपारिया, शाहनवाज और इनकी पूरी फैमिली। मारहरा दरवाजा एटा से ये मैसेज हमें मिला है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान इसी गीत के ख्वाहिशमंद हैं।
0: भाई हमारे श्रोता क्या करते हैं, जब नाम हम बोल देते हैं ना और शामिल हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसके बाद वो थैंक्स भी अदा करते हैं। चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और नमित ये मैसेज लीजिएगा आप।
1: ये मैसेज सलार पहलगाम कश्मीर से हमें मिला है और लिखने वाले हैं पीरजादा मिराजुद्दीन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का मैसेज भी कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा शेख, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश करता है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। एक मैसेज हमें रामपुर से मिला है शिफा और फिजा और जिया का। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से फरमाइश करता है हमारे श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे और इसी गीत को सुनना चाहते हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। तो लीजिए श्रोताओं आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ये दिल्लगी से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था ये, लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था ये दिल लगी। और गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। और अगर आप भी अभी कोई गीत सुनना चाहते हैं, लगभग 28 मिनट हैं हमारे पास, तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा पता तो खतों के ज़रिए तो आप जानते ही हैं। कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। और भाई डिजिटल दौर है, हैंड टू हैंड आप SMS कर रहे हैं और हैंड टू हैंड हम शामिल कर रहे हैं, तो 94-570-78-288 ये हमारा सिंगल नंबर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोता जुड़े हैं। भाई देखिए हमारे नजीबाबाद के पास कहीं हैं ये नगीना के अनिल विनोचा, अक्षय विनोचा, शम्मी विनोचा, कनिका अरोड़ा, गीत अरोड़ा और सहज अरोड़ा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद बरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हगे, कमल, दिव्या और जय के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद, तहसील रोड गंजुंडवारा के एच रही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज भाई देखिए गुलाब के साथ आ रहा है हमारे पास में। ये मैसेज करने वाले हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ नगमा नाज मंसूरी भी है। उत्तम नगर दिल्ली के हमारे श्रोता हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और बोधराज खोरवाल के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे श्रोता हैं। ये खुशदिल परिवार है जी हाँ, चकला बाजार समाना शहर का पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, जिंदल आरजू, पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खां, हसीना बानो, एलेजा नायाब और लड्डू। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए हमारे ये श्रोता भी हैं, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। नमित,
1: ये मैसेज हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मिला है। फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। एक मैसेज हरियाणा झज्जर से हमें प्राप्त हुआ है, ये हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। मेन रोड तिल्हारा से आप हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। इसी गीत के ख्वाहिशमंद करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से संदेश में मिला है यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह का। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से फरमाइश करता है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने। तेलंगाना वारंगल से आप हैं ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबैरिया। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। जाखोद राजस्थान से ये संदेश हमें भेजा है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। एक संदेश हमें पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। फरमाइश करता है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, राम देवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से और खुदा बख्श खलीफों की बावड़ी से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। तेलंगाना भोंगीर से आप हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: संदेश से पहले आपने सुना बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश हमारे आप सब श्रोताओं की है, लेकिन खतों के जरिए। तो खतों में कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरा ये हम देखते हैं। ये खत है हमारे हाथ ने कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी, मौला बकर का सबान शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता हैं, रऊफ अहमद निजामुद्दीन, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद हन्नान के अलावा इनका पूरा परिवार। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और कस्बा मीरगंज बरेली के ही हमारे श्रोता हैं भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं खतों के जरिए। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक, शाही मार्केट सियौरा जिला बिजनौर के श्रोता हैं आसिफ चौधरी, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी। ये खत है मेरे हाथ में। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिना नूर का, जसपुर उत्तराखंड के श्रोता हैं ये, आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राना सिद्दीकी, मौला अफगानान शेरकोट बिजनौर के श्रोता हैं, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड के जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं सहारनपुर दाऊदसराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी, दूल्हापुर मुरादाबाद से हमारे श्रोता हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और उनका पूरा परिवार, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर के श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून के अलावा ये श्रोता हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफवान, अदीना नूर, ग्राम जुझेला, थाना शिवाला, कलां बिजनौर के, तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, मोहम्मद उमेर अंसारी और ये खत एक और है हमारे हाथ में जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा के श्रोता हैं हमारे बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और इनके बहुत सारे साथी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई एसएमएस के जरिए हैं नमित
2: जी। ये तेलंगाना भोंगीर से हमें मैसेज मिला है मोहम्मद बुरहानुद्दीन का,
1: फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया का मैसेज है और
2: शेरकोट बिजनौर से
1: ये हम खत के जरिए पढ़ चुके हैं नाम,
2: गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। एक मैसेज हमें मिला है जलगांव जंक्शन से और ये फरमाइश करता है डॉक्टर दिनेश काले। जवाहरनगर उदयपुर से आप हैं बाबू भाई और भारती देवी, आपका संदेश भी कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है। इस बीच एक अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है परी महल कासगंज से, फरमाइश करता है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और एम असलम सैफी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज भी हमें इसी गीत की फरमाइश के लिए मिला है। गंज डुंडवारा से ये संदेश हमें मिला है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का। सब्जी मंडी बुलढाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। ये मैसेज खेल बाजार पानीपत से हमें प्राप्त हुआ है, लिखने वाले हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। तो लीजिए श्रोताओं आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वर में फिल्म काश आप हमारे होते से ये खूबसूरत सा गीत।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काश आप हमारे होते का ये गीत।
1: और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए नमित फरमाइश हमारे आप सब श्रोताओं की है विलेज पोस्ट राउनंगली से प्राची शर्मा, लक्षिता चौहान, निधि रानी और आचार्य सत्यवीर सिंह। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे आप सब श्रोता भी हैं बीजना मुरादाबाद के राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका और यूनुस खान के अलावा सोफिया खान भी जुड़े हुए हैं। इस बीच ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, हाँ जी हमारे श्रोता हैं भाई देखिए ये संगीता टॉकीज शाहगंज आगरा के श्रोता हैं हमारे नियमित हैं महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन चिट्टू। और साहब इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे ये श्रोता भी हैं भाई देखिए यहाँ से मैसेज आ रहा है पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड के श्रोता हैं हमारे शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। अच्छा बहुत सारे श्रोता हमारे ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको मैसेज जो है हमारे नज़र नहीं आ रहे क्या, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं हमारे बिल्कुल, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई इसके अलावा कि हम कोशिश करते हैं कि भाई आप सबके मैसेज पढ़ें, इधर हमारे पास और मैसेज आ जाते हैं क्लिक उधर करते हैं हम तुरंत वो मैसेज ओपन हो जाते हैं, लेकिन भाई बहुत सारे मैसेज तो हमारे पास जाहिर सी बात है नियमित बात है कि रहने ही है, तो थोड़ा सा तारतम्य बना के रखिएगा, एक सामंजस्य बना के रखिएगा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता हैं सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग के अलावा ये हमारे नियमित श्रोता हैं मारहारा दरवाजा एटा के नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया अंजुमन खान और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ये हमारे श्रोता हैं जी ये मैसेज लेते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरा, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और कुछ मैसेज और नमित ले लो आप थोड़े से वक्त तो रहा नहीं है लेकिन और ये मैसेज मैं
0: ये मैसेज हमें मोहल्ला मजार चांद शाम मियाँ
1: रामपुर
0: से है मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई का। और इस गीत के लिए अंतिम फरमाइश गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमरन आफरीदी और राधा नामदेव।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे यानी नमित राज को दीजिएगा इजाजत। आपके साथ कार्यक्रम में बने रहेंगे हमारे साथी मनोज वर्मा जी।
1: धन्यवाद नमित। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 11 बज रहे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। तो चित्रपट संगीत कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में। और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज मशहूर फिल्मी गायक है ना, और संगीत निर्देशक के अलावा भाई बिल्कुल पसंदीदा हम सबके सोनू निगम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। तो आकाशवाणी परिवार और हमारी ओर से सोनू निगम साहब को बहुत बहुत उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं। और हम आपको बता दें कि बेहतरीन गायकों में से गिने जाते हैं आप, और लगभग 32 भाषाओं में इन्होंने 6000 से ज्यादा गीतों को गाया है। चलिए सुनवाते हैं आपको इन्हीं का गाया हुआ ये गीत।

0: सोनू निगम की आवाज में आपने अग्निपथ फिल्म का यह गीत सुना। अमिताभ भट्टाचार्य का यह गीत लिखा हुआ था और अजय अतुल की धुन थी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

श्रोताओं, यूं तो बरसात का मौसम शुरू हो ही चुका है, लेकिन भाई आज से श्रावण मास भी शुरू हो चुका है। और श्रावण मास की जो ख़ास बात होती है वो तो हम सब जानते हैं, भाई शिव जी को भी प्रिय होता है ये मास, है ना। और श्रावण के महीने में बारिश भी होती हैं और मौसम बड़ा खुशनुमा हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये महीना थोड़ा सा बीमारी भी लेके आता है। तो भाई सावन के इस महीने का, बरसात का पूरा आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक रहिएगा और सेहत का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा, है ना। और कोशिश करें कि भाई भीगे ना, है ना। हालांकि कई बार तो हमारे श्रोताओं को, और अगर अपने आप को भी जोड़ दें हम, तो भाई आप कहेंगे कि हमें भी बारिश में कई बार नहाने का शौक लगता है। तो थोड़ा सा भाई एहतियात रखें और कोशिश करें कि पूरा मज़ा लें और जागरूक होके और सचेत होके इस मौसम का मज़ा लें, है ना। फिलहाल आज सावन की शुरुआत थी तो

सुबह सवेरे भी बारिश की बूंदें सराबोर कर रही थी हम सबको, और हमारे नजीबाबाद में तो बारिश थोड़ी सी हुई है। अभी हम स्टूडियो में हैं और ये नहीं कह सकते कि भाई आपके कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से ये मौसम बारिश का ही होता है। फिलहाल एक गीत आपको सुनवा देते हैं सावन से जुड़ा हुआ।

चांदनी फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरेश वाडेकर अनुपमा देशपांडे की आवाज में। आनंद बख्शी इसके गीतकार थे और संगीतकार शिव हरि। जहां सावन के मौसम में बरसात की शुरुआत होती है, मौसम खुशनुमा हो जाता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, आसमान में बादल नजर आते हैं, तो वहीं एक खास बात और होती है इस महीने में। तीज त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं इस महीने से, है ना। हरियाली तीज आती है, फिर रक्षाबंधन आ जाता है, उसके बाद फिर एक कहने हैं कि झड़ी सी लग जाती है त्यौहारों की। तो फिलहाल तो हरियाली तीज आएगी और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि भाई झूले भी पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ में झूला झूला जाता है। एक चलन था जब घरों के अंदर झूले डलते थे, आजकल तो वो झूले कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन कहीं कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो भाई जो आम के पेड़ होते थे

रोशन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ यह गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आपने सुना बहू बेगम फिल्म से। और सावन में झूले भी पड़ गए, बरसात भी हो गई और मिलने मिलाने का मौसम भी तो होता है ये।

में आपने सुना लवर्स फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का गीत था, आर डी बर्मन की धुन थी। अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में, फिल्म का नाम गरम मसाला। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा है और प्रीतम की धुन है।

गरम मसाला फिल्म के इस गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
3: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
3: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
2: लब्ध प्रतिष्ठ।
3: इसका अर्थ है
2: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
3: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
3: श्रोताओ आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
2: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।
4: ना।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।

0: पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो,
7: चलो
8: मुझे गर्म हो रहा है,
7: ये लीजिए बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
2: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद

0: नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को

0: के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
1: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
4: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
5: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40

0: 20 मिनट पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
1: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आज का अंक। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 8 बजे संसद समीक्षा और कंट्री वाइड इंसाइट्स कार्यक्रम 9:30 पर, आज रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और संदेश टू सोल्जर्स अपराह्न 4 बजे। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

डॉक्टर प्रवीण कटारिया की वार्ता का विषय रहेगा भारतीय समाज के सटीक प्रतिबिंब के रूप में प्रेमचंद का साहित्य। आज शाम 6:45 पर।

आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर पशुओं में गलघोटू रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर स्नेहल निर्वाण से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी।

युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर क्रम रहेंगे बूझो तो जाने। कुछ खास है आज, बूस्टर और फिल्म संगीत के साथ ही फरहीन की वार्ता का विषय रहेगा ज्ञान संस्कृति और सामाजिक विकास का आधार पुस्तकालय।

शांति शाह के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे आज दिन में 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में।

आज दिन में 2:30 पर एक ही संगीत कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे संगीतकार जयदेव के विषय में।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से, सोनू निगम और हरिहरन की आवाजों में। इस देशभक्ति गीत को लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना सोनू निगम और हरिहरन की आवाज में। फिल्म का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। समीर ने इसकी धुन तैयार की थी, समीर ने इसके बोलों को लिखा था और AR रहमान ने इसकी धुन तैयार की थी। और सैनिक भाइयों, आपका बहुत हम सम्मान करते हैं। दूर दराज के इलाकों में आप लगे हुए होते हैं, सीमाओं पे लगे होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी लगे होते हैं कि जहाँ पे आना आपका मुश्किल होता है अपने घर तक। छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है और फिर ये महीना सावन का महीना है। आज से सावन शुरू हो गया, सावन का महीना मिलाने का महीना है। घर परिवार भी याद करता है, लेकिन क्या करें कि भाई मजबूरियाँ होती हैं, देश सेवा पहले होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर से ये आवाज़ तो आती ही है।

प्रीति सागर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में आपने सुना भूमिका फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत तैयार किया था वनराज भाटिया ने। पेश कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में, फिल्म का नाम है खलनायक।

अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आपने सुना खलनायक फिल्म का ये गीत। पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत अलका याग्निक के साथ विनोद राठौर की आवाज। फिल्म का नाम इक्का राजा रानी। समीर ने इस गीत को लिखा है, नदीम श्रवण की धुन है।

आप सुन रहे थे अभी सैनिकों के लिए कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। समय है मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का। तो मिड डे मेलोडी कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में। शुरुआत करेंगे इस गीत के साथ।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना बरसात फिल्म का ये गीत। समीर ने इस गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: पेश है मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम शुरुआत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल के साथ मनहर उदास की, साथ में अन्य साथी भी हैं।

शुरुआत फिल्म का यह गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में, साथ में अन्य साथी भी थे। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज में, फिल्म का नाम मुझे कुछ कहना है। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

और ये है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम दहलीज। आवाजें हैं महेंद्र कपूर के साथ भूपेंद्र की, हसन कमाल के बोल हैं और संगीत रवि का।

0: दहलीज फिल्म के इस गीत के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, और उसके बाद इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आईएएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हैं तो इसमें सावन का महीना खास है। सावन वो पावन महीना है जो प्रकृति, भक्ति और संस्कारों का अद्भुत संगम है। सावन का नाम आते ही मन में झूले, कजरी के स्वर, मेहंदी रचे हाथ, हरियाली और भगवान शिव की आराधना की छवि आंखों के सामने उभर आती है। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन वो समय है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ पे धारण कर लिया था और इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग नदियों और सरोवरों का जल भगवान शिव को अर्पित किया गया और तभी से भगवान को जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और इसी कारण ये पूरा महीना कांवड़ यात्रा के साथ भगवान शिव की आराधना में डूब जाता है और पूरा माहौल शिवमय रहता है। सावन का जो महीना है वो प्रकृति के संदेशों से भी जुड़ा है। चारों ओर फैली हरियाली हमें ये सिखाती है कि वृक्ष, वर्षा और प्रकृति ये सब हमारे जीवन का आधार हैं और हम ही नहीं पूरे प्राणी जगत के लिए इनका महत्व है, ये है तो हमारा जीवन है। वर्षा जल की अधिकता के कारण जल संरक्षण यानी कि वर्षा के जल को बचाना भी हमें ये सावन सिखाता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि सावन जल का प्रतीक है और जल है तो जीवन है। तो हम सभी इन महीनों से यही सीख सकते हैं, जैसे सावन का महीना है, हमने कहा कि ये प्रकृति के संदेशों का महीना है, तो इसमें हम सीख सकते हैं प्रकृति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना और साथ ही अपनी जिम्मेदारी को निभाना, जैसे वर्षा जल को बचाना, वृक्षों को लगाना और उनका पालन पोषण करना। और ये सब अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तभी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस सुंदर सावन का आनंद ले सकेंगी। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में कुछ संदेशों के साथ।

बहनों, इन संदेशों से पहले हम बात कर रहे थे सावन की, और सावन के महीने में मेहंदी लगाने का चलन भी सदियों से है। मेहंदी जो कि एक कला है, और मेहंदी कलाकारों ने इस कला को अब एक नया आयाम दे दिया है अपनी कला के माध्यम से। तो आज आधी आबादी में एक मेहंदी कलाकार की सफलता की कहानी आपके साथ साझा करेंगे क्रम आधी आबादी में। भारतीय परंपरा में मेहंदी श्रृंगार का हिस्सा तो है ही, साथ ही इसे शुभता और प्रेम से भी जोड़ा जाता है। ब्याह शादी जैसे मांगलिक कार्यों, पर्वों और त्योहारों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। तो ये कहना गलत न होगा कि मेहंदी केवल हाथों की सजावट नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का प्रतीक है। आज के आधुनिक समय में

0: वीना नागड़ा का जन्म और पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करने का शौक था। वो बचपन में कढ़ाई का काम बहुत सुंदर करती थी। हाथों पे मेहंदी तो बस यूं ही शौकिया लगा दी, और उस समय मेहंदी इतना बड़ा पेशा माना भी नहीं जाता था। तो वीना जी ने शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। शुरुआती दिनों में उन्होंने 10 रुपए से मेहंदी लगाना शुरू किया।
1: मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, मुझे पढ़ना था और हम लोग के फैमिली में लड़कियों को इतना बाहर जाने नहीं दिया, तो SSC तक मैं पढ़ी और फिर बोला घर में बैठ के हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी ये सब मैं काम करती थी। पर मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था कि बॉलीवुड मेहंदी क्वीन या कुछ बनूंगी। जैसे ही मैं एम्ब्रॉयडरी घर में करती थी, मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी हो गई थी, तो उनके डॉक्टर के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी, तो बोली 2 मेहंदी वाली चाहिए, बांद्रा में जाना था। तो उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया और बोला कि वहाँ गिफ्ट भी मिलेंगे और उनको मेहंदी लगाने जाने दो। तो मुझे मेहंदी आता ही नहीं, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि तू जो एम्ब्रॉयडरी करती है वो कौन से कर लेना, और बांद्रा जाना था, कार में जाना है, तो ये सब हमारे लिए तो बहुत ऐसी बात थी कि कार में जाने का है। बस उस दिन शायद मेरी बॉलीवुड की जर्नी तय होगी, मैं निकल गई घर से बाहर। उस दिन मेहंदी लगाने ही बाहर निकले थे और पूनम ढिल्लो जी घर में आए, उनके तो 5 मिनट तो मेहंदी वगैरह स्टॉप कर दी पूनम ढिल्लो जी पर, मैंने सामने देखा और फिर वो आए और उन्होंने बोला कि मुझे एक हाथ में मेहंदी लगानी है। उनका हाथ पकड़ना उस टाइम पे और मेहंदी लगाना, और मैं फ्रेंकली बोलूं मेरे को इतनी अच्छी मेहंदी आती भी नहीं, पर उन्होंने बोला लगानी है, तो मैं मेहंदी लगाने बैठ के उनके हाथ में, उन्होंने बताया कि नहीं मुझे दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगानी है कि मेहंदी बहुत अच्छी है। तो मेरे माइंड में कवर कर गया कि पूनम जी ने बोला मेरी मेहंदी बहुत अच्छी है। बस उस दिन से मेरा सफर स्टार्ट हो गया मेहंदी का।
0: वीना जी के लिए शुरुआत आसान नहीं थी, सीमित साधन, कम आमदनी और पहचान की कमी, क्योंकि वो दौर सोशल मीडिया का तो था नहीं, बस एक दूसरे से सुनकर उनकी कला को आगे बढ़ने का मौका मिला। इन सब चुनौतियों के बीच वो लगातार नए नए डिजाइन सीखती रही और अपने काम में निखार लाती रही। मेहंदी के रंगों की तरह उनकी मेहनत का रंग भी गहरा चढ़ा, और इसके साथ ही समय ने करवट ली, और फिर वो समय भी आया जब उनके नाम की चर्चा बड़े परिवारों और फिल्मी दुनिया तक पहुंच गई। अंबानी परिवार सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने उनकी मेहंदी को पसंद किया। उनके मेहंदी के डिजाइन इतने पसंद किए जाने लगे कि फिल्मी हस्तियां अपनी शादी में उन्हीं के हाथों से मेहंदी लगवाना पसंद करती, और उनके साथ फिल्मों के सीन में भी वो मेहंदी लगाने का काम करने लगी। और इसके साथ ही वीना नागड़ा एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हो गई।

0: वो लगभग 4 दशक से मेहंदी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनके डिजाइन में राजस्थानी पारंपरिक भारतीय अरेबिक और आधुनिक फ्यूजन शैली का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। वीना नागडा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी कला और कोई भी सपना छोटा नहीं होता। अगर लगन और मेहनत हो तो छोटी सी धनराशि से शुरू हुआ सफर भी लाखों दिलों तक पहुंच सकता है। बहनों, यह था आदि आबादी का क्रम और अब बात करते हैं देश अटन की। जी हाँ बहनों, घूमना फिरना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यही यात्रा हमको कई बार इतिहास की जानकारी देती है। कई चीज़ें जो हमने कभी जानी नहीं होती, इन जगहों पर जाकर हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। और वहीं ये जो देशाटन होता है, ये जो यात्राएं होती है, जो हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, इसी से जो है उस राज्य के, जिस जगह हम जाते हैं, उसकी आर्थिकी को बल मिलता है। बात अगर हम महिलाओं की करें तो महिलाएं भी आज इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो भी जहाँ भी जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उस जगह पर अपने छोटे मोटे रोजगार करके अपनी आर्थिकी को बढ़ाती हैं और अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करती हैं। तो आज इसी संबंध में आपको और अधिक जानकारी दे रही हैं बहन नूतन राजपूत अपनी वार्ता के माध्यम से, देशाटन से महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण।
1: मैं एक माँ, टीचर और एक यात्री हूँ। आज आकाशवाणी के माइक से आपसे देशाटन की बात करने आई हूँ, क्योंकि देशाटन स्त्रियों को सिर्फ घूमना नहीं सिखाता, जीना सिखाता है। यहाँ पर मेरा मानना है कि जब एक महिला चलेगी तो घर चलेगा, समाज चलेगा और देश चलेगा। 30 मई सन 2026 को सुबह 7 बजे हमने बड़े उत्साह के साथ अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। कुछ नया पाने की चाह में हम मध्य प्रदेश पहुंच गए। इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में इटावा जिले से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, इसके बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधा उज्जैन अर्थात महाकाल की नगरी में पहुंचे। वहां पर छिप्रा नदी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। मैंने सुन रखा था कि छिप्रा नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां पर मुझे कष्ट की अनुभूति हुई, क्योंकि वह जल हमारी असावधानियों के कारण अब प्रदूषित हो चुका है। जल भले ही ना दिखा हो, पर माँ की पवित्र आत्मा तो वही थी। शिव जी तो सूखी नदी में भी विद्यमान है। अवलोकन करने से मुझे पता चला कि वर्ष 2027-28 में कुंभ मेले की तैयारी यहाँ जोरों पर है, जिसके तहत यहाँ माँ छिप्रा सफाई अभियान चलाया जाएगा। आर्थिक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण माँ छिप्रा को नवजीवन प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग ना करें। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारी टीम में एक बुजुर्ग महिला जो अपना अनुभव हमें बता रही थी, वे बता रही थी कि पहले समय की महिलाएं किस तरीके से बहुत कम पानी से अपने सभी घरेलू कार्यों को पूर्ण कर लेती थीं, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अपने सफर में मैंने हम सबको पानी की समस्या से जूझते हुए भी देखा है। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने पर हमें बहुत अच्छा लगा। वहां का वातावरण पूर्णतया शिवमय था। महाकाल के जयकारे वातावरण को पवित्र बना रहे थे। वहां के पशु पक्षियों का व्यवहार भी शांतिमय प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच भी साधारण से दिखने वाले कुत्ते आराम से सो रहे थे और ठोकर खाकर भी किसी को काटने का प्रयास नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा था कि जीवन में ठोकर मिले तब भी शांत चित रहना चाहिए। इन भैरवनाथ की तरह मैं अपनी 8 वर्ष की बेटी को साथ ले जाती हूँ तो वो महाकाल की भीड़ देखकर डरती है। मैं उसका हाथ पकड़कर कहती हूँ, बेटा डरो मत, दोषी भीड़ है, भगवान नहीं। वो सीखती है डर से भागना नहीं, धैर्य से खड़े होना है। माँ का देशाटन ही बेटी की पाठशाला यहाँ पर बन जाता है। महाकाल की गली में जो बहन रुद्राक्ष बेच रही हैं, आज हमारा देशाटन उनका रोजगार बन गया है। इस प्रकार वो भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दे रही है। यात्राएं सीखने का सबसे अच्छा साधन है। नर्मदा नदी जो धैर्य और संस्कृति दोनों का संगम स्थल है, यहाँ मैंने कुछ नया देखा। गिरो, उठो, बहते रहो, बिल्कुल नर्मदा की तरह धैर्य पूर्वक। अमलेश्वर मंदिर अर्थात माँ वाला मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग बहुत छोटा है पर ऊर्जा बहुत अधिक। इससे हमें यही सीख मिलती है कि ताकत हमेशा ऊंचा या लंबा होने में नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और अंदर वाली शक्ति सबसे बड़ी है। नर्मदा नदी ओंकारेश्वर में कावेरी नदी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश और गुजरात की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की प्रमुख जीवन रेखा है, जो वन्य जीव जंतुओं को आवास, बिजली, नौका, परिवहन और मछुआरों का भरण पोषण करती है। इसके बाद हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देखने के लिए नंदियाल जिले के श्रीशैलम कस्बे में पहुंचे। यह कृष्णा नदी के तट पर नल्ला मल्ला पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने कार्तिकेय जी को मनाने के लिए यहाँ तप किया था। इसका सीधा अर्थ है कि रिश्ते निभाने के लिए हमें तप करना पड़ता है। माँ बनकर, पत्नी बनकर और बहू बनकर अपने कर्तव्य निभाना सब एक प्रकार का तप ही है। यहाँ पर कृष्णा नदी पहाड़ काट कर बहती है, अर्थात कृष्णा नदी हमें बताती है कि बाधाएं पत्थर जैसी हों तो भी उन्हें काटते हुए निकल जाओ। इसके बाद हम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पहुंचे। यहाँ पर शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबक कस्बे में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। पुराने समय में इसको गौतमी गंगा भी कहते थे, क्योंकि गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से माँ गंगा को यहाँ पर बुलाया था। आज भी इस नदी को दक्षिण की गंगा कहकर पुकारा जाता है। मैंने त्र्यंबकेश्वर में देखा एक ही पत्थर पर तीन भगवान। समझ में आया शिवाजी महाराज क्यों इतने बड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति एक नहीं तीन रूपों में होती है, बनाने वाली, चलाने वाली और बचाने वाली। स्त्री भी तो यही है ना, माँ भी, पत्नी भी और योद्धा भी। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पर संदीपन मुनि का आश्रम, अंजनेरी पर्वत, मुक्तिधाम मंदिर और सीता गुफा भी देखी। सीता गुफा शब्द मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तब मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से इस स्थान के सही नाम के विषय में पूछा, तो एक बाबा जी ने मुझे बताया कि पुराने समय में इसे सीतामढ़ी या सीता मंडना कहते थे। मंडना एक प्राकृत मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा महल, मंडप या रहने का स्थान, अर्थात सीता माता का मंडप। कहा जाता है अंग्रेजों ने इसे अपने नक्शे में केव लिख दिया था, तभी से सब इसे सीता गुफा बोलने लगे। फिर हम कर्नाटक गए, हम्पी में तुंगभद्रा नदी देखी। नीचे रेत नहीं, कोई मिट्टी नहीं, सिर्फ चट्टान। नदी ने कहा मैं कमजोर चीज पर नहीं बहूंगी। हम्पी टूट गया, बाजार खत्म हो गए, पर विरूपाक्ष मंदिर आज भी खड़ा है। तुंगभद्रा ने मुझे सिखाया कि जड़ अगर पत्थर की हो तो कोई तूफान उसे नहीं गिरा सकता। आंध्र प्रदेश के श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में राजमाता जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के भित्ति चित्र मुझे सबसे अच्छे लगे। शिवाजी का पूरा जीवन पिक्सलाइज किया गया है, मतलब हर दीवार पर पत्थर से उनकी कहानी उकेरी गई है। यह लग रहा था कि यह शिवाजी महाराज का मंदिर एक पूरी किताब है। सबसे पहले मेरे हृदय को वो वाला पिक्सल छू गया जब शिवाजी महाराज माता के गर्भ में हैं। उस दिन समझ आया कि देशाटन जरूरी क्यों है, ताकि हम देख सके कि सबसे बड़ा किला तो माँ की कोख होती है, जहाँ से इतिहास जन्म लेता है। गर्भ में ही राष्ट्रभक्ति का बीज बो दिया था माँ ने, खून से पहले संस्कारों की स्याही घोल दी थी माँ ने। एक चित्र में मैंने देखा कि शिवाजी महाराज तलवार लेकर नहीं, आंसू लेकर मल्लिकार्जुन के सामने खड़े थे। उस दिन समझा सशक्तिकरण का मतलब अकड़ नहीं, झुकना भी है। जहाँ जरूरत हो वहाँ झुक जाना, यही असली ताकत है। मैंने श्रीशैलम में शिवाजी महाराज को चार रूपों में देखा, माँ की कोख में शिष्य, मल्लिकार्जुन के सामने भक्त और युद्ध में योद्धा और बालाजी के सामने दास। उस दिन समझ में आया कि देशाटन एक महिला को ये सिखाता है कि तुम माँ भी बनो, योद्धा भी बनो और जरूरत पड़ने पर शीश झुकाने वाली भक्त भी बनो, तभी तुम संपूर्ण स्त्री कहलाओगी। मैंने दीवार पर नक्शा देखा, शिवाजी महाराज की फौज दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी और तीर मंदिरों की तरफ थे। उस दिन समझा कि देशाटन हम महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने नक्शे पर लकीरें नहीं खींची थी, मंदिरों की रक्षा की रेखाएं खींची थी। मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई थी, पर दीवारों ने मुझे चार किले जिता दिए। समझ में आया कि ये किले पत्थरों से नहीं बल्कि माँ के संस्कारों से बने थे। मैंने एक दीवार पर देखा कि शिवाजी महाराज जीत के बाद भी दुश्मन का हाथ पकड़ रहे थे। उस दिन समझा कि सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, क्षमा भी है। एक स्त्री भी यही करती है ना बहनों। मैंने दीवार पर एक नक्शा देखा, लाल लकीर रायगढ़ से श्रीशैल तक जा रही थी। नीचे लिखा था 24 मार्च 1677। उस दिन शिवाजी महाराज ने मल्लिकार्जुन के दर्शन किए थे। आज 350 साल बाद मैं भी उसी तारीख के आसपास वहाँ अपने आप को उपस्थित मान रही थी। समझ आया कि देशाटन का मतलब अपने पूर्वजों के कदमों के निशानों पर पैर रखना है, अर्थात अपनी पीढ़ियों को जोड़ना है। मैंने मदुरई में मीनाक्षी माँ को देखा, माँ राजा बनकर बैठी हैं और बगल में शिवजी सुंदरेश्वर बनकर खड़े हैं। समझ में आया कि महिलाएं कमजोर नहीं होती, वे राज करती हैं और पुरुष उनका साथ देते हैं। मंदिर के ऊपर 14 टावर हैं और उन सब पर हजारों मूर्तियां, दूर से ही लगता है कि इंद्रपुरी उतर आई है। मैंने रामेश्वरम में देखा कि माँ सीता के हाथ का बनाया शिवलिंग आज भी पूजा जाता है, वही आज का रामलिंगम है, इसलिए नारी शक्ति कम नहीं है। और 12 जून 2026 को भारत माता के पैरों तक पहुंच गए हम, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों एक साथ मिलते हैं। मैंने कन्याकुमारी में भारत माता के पैर छुए, तीनों समुद्र उनके पैर धो रहे थे। अब समझ में आया कि भारत माता के पैर धोने के लिए सिर्फ पानी नहीं, त्याग चाहिए। माँ अकेली खड़ी है समुद्र के सामने। दुनिया कहती है अकेली औरत कमजोर होती है, पर कन्याकुमारी माँ तो यहाँ तीन समुद्रों को जोड़ती है। मैंने सोचा एक स्त्री भी अकेली दिखती है, पर वह अनेक रिश्तों को अकेली ही जोड़ लेती है। मैंने श्रीशैलम में फूलवाली को देखा, रामेश्वरम में प्रसाद बेचने वाली माँ को देखा, और कन्याकुमारी में नारियल पानी बेचने वाली, मदुरई में मंदिर की गाइड दीदी, और हम्पी में चाय बेचने वाली अम्मा को देखा। इस तरह मैंने अनेक स्त्रियों को वहाँ पर रोजगार करते हुए देखा। कोई समुद्र से निकले हुए सामान बेच रही है, तो कोई वहाँ पर अन्य कार्य कर रही है। ये सब देशाटन की वजह से ही वो धन कमा रही हैं। मैं घूमी तो उनका घर चला, और इस तरह ये सब महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा बनी हुई हैं। तो बहनों, उठो और देशाटन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली जीजाबाई, अगली मीनाक्षी, अगली कन्याकुमारी हम ही तो बनेंगी। धन्यवाद।
0: ये थी वार्ता नूतन राजपूत, जो अपनी यात्रा का वृतांत और संस्मरण के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि कैसे देशाटन से महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है। और बहनों, जैसे कि वो खुद गई हैं वहाँ पर, और खुद उन्होंने उसी तरह से पूरा वृतांत हमें सुनाया, क्या क्या वहाँ पर खूबियाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी, और इनसे सीख लेकर वो जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम गीत संगीत के साथ, और सुनते हैं ये बरखा गीत।

मैंने इस गीत का आनंद आपने लिया और आपके साथ साथ हमने भी इस गीत का आनंद लिया, और हम कहेंगे कि सावन का जो आनंद हम तभी ले सकते हैं कि जब हम अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें, कहीं घूमने के लिए इधर उधर जाएं तो कहीं पर भी इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे कि हमारा जीवन खतरे में आ जाए। शासन प्रशासन जिस तरह के भी कोई अलर्ट जारी करता है तो उन्हें भी हम सुने, उन्हें भी हम माने। इसी के साथ सावन का महीने की जब हमने शुरुआत से लेकर अब तक बात की है, तो सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा है वो हमारी भारतीय संस्कृति की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, और हम सभी श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। और जो भी श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं या जो इस यात्रा पे जाते हैं, इस यात्रा के दौरान हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी वजह से किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। शासन प्रशासन द्वारा जो नियम कांवड़ यात्रा को लेकर बनाए जाते हैं उनका हम पालन करें, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को हमारी वजह से ठेस न पहुंचे, और आनंद पूर्वक भक्ति के साथ हम इस यात्रा का हिस्सा बने ताकि कहीं पर भी जो है हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई अशांति ना फैले। इन चीजों का हम ध्यान रखें और भगवान का नाम लेते हुए अपनी इस यात्रा को हम पूरा करें। और अब कार्यक्रम में चलते चलते ये बात भी हम आपको बता दें बहनों कि हमारे कार्यक्रम में महिला जगत में जो महीने का तीसरा मंगलवार होता है उसमें हेलो सखी कार्यक्रम आप सुनते हैं, जिसमें सीधे फोन कॉल के माध्यम से आप जुड़ते हैं। इसके लिए आपको हम फोन नंबर बता देते हैं, 01341 एसटीडी कोड है और नंबर है हमारा 230105, यानी कि 230105, और दूसरा नंबर है हमारा जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं 9457078288, 9457078288। इन दो नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, हमें अनुमति दें, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शांति शाह के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में ये कुमाऊनी लोकगीत।

शांति शाह की आवाज में आपने सुना यह कुमाऊनी लोकगीत। लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शांति शाह के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। पेश है कार्यक्रम का अगला कुमाऊनी लोकगीत।

इससे पहले कि हम आपको लोकधारा कार्यक्रम का अंतिम कुमाऊनी गीत सुनवाएं, हम आपको बता दें कि अपराह्न 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं, और पेश है कार्यक्रम का अंतिम कुमाऊनी लोकगीत शांति शाह की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मीन एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट, एनी सब कंट्रैक्टर, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स।

0: नहीं होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
5: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर

0: एक बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
5: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरो मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। तो एक ही संगीतकार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में आज का अंक लेकर, जिसमें हम आपसे बात करेंगे संगीतकार जयदेव की, जो भारतीय हिंदी फिल्मों के बेहतरीन संगीतकारों में से एक माने जाते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इनका जन्म 3 अगस्त 1918 को नैरोबी केन्या में हुआ था, लेकिन पालन पोषण भारत के लुधियाना में हुआ। 15 साल की उम्र में वे फिल्म स्टार बनने के लिए मुंबई भाग गए, जहां उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 8 फिल्मों में काम किया। संगीत की शिक्षा इनके पास लुधियाना से ही थी, लेकिन उन्होंने मुंबई में कृष्ण राव जोकर और जनार्दन जोकर से संगीत सीखा। सन 1943 में उन्होंने संगीत की शिक्षा लखनऊ में अली अकबर खां से ली। सन 1961 में जयदेव फिल्म हम दोनों में संगीत देने के बाद पहचाने जाने लगे। इस फिल्म के सभी गीत काफी सराहे गए। एक गीत इस फिल्म का यानी हम दोनों का हम आपको सुनवाएंगे, जो 1961 में बनी थी और जिसका संगीत जयदेव ने दिया था। ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में है और बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में जिन बोलों को आपने सुना वो साहिर लुधियानवी के लिखे हुए थे और जयदेव ने इसका संगीत दिया था। फिलहाल ये संदेश, उसके बाद आगे की बात करेंगे।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

कार्यक्रम एक ही संगीतकार आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जयदेव के संगीतबद्ध किए हुए कुछ गीत और उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा भी साथ साथ हम कर रहे हैं। श्रोताओं, सन 1961 तक की बात तो हमने आपसे कर ली, उसके बाद की अगर बात करें तो जयदेव की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन फिर जयदेव ने एक ऐसी फिल्म में संगीत दिया कि वे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इस फिल्म का नाम था गमन। इस फिल्म में गीत और गजलों दोनों में ही इन्होंने अपना संगीत दिया था। उन्होंने गमन फिल्म में कई बेहतरीन गायकों को गीत और गजल गाने का मौका दिया। उनमें से एक गायक रहे हैं सुरेश वाडेकर साहब, उन्हीं की आवाज में हम आपको गमन फिल्म का गीत सुनवाएंगे और ये रचना शहरयार की रचना है। तो लीजिए सुनिएगा सुरेश वाडेकर की आवाज में ये रचना।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, जयदेव, जिनका पूरा नाम जयदेव वर्मा था, ने अपने संगीत में पारंपरिक और लोक संगीत को मिलाकर एक अनूठा काम किया, जिससे उन्हें उस दौर में विशेष लाभ मिला और एक विशेष पहचान भी उनको मिली। एक गीत आपको सुनवाएंगे हम, उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ, और ये रचना नक्श लायलपुरी साहब की है, आवाज इसमें लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, और ये फिल्म सन 1978 में बनी थी। बहुत खूबसूरत गीत है, आप भी सुनिएगा।

बहुत ही खूबसूरत संगीत था इस गीत में जयदेव साहब का। बोल बहुत खूबसूरत रहे हैं जानिसार भाई। एक बार फिर हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम गलत सा बोल गए हम, है ना। संगीत तो इसमें बहुत ही खूबसूरत जयदेव साहब का था। नक्श लायलपुरी के ये बोल थे और बेहतरीन आवाज़ रही है लता मंगेशकर की। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस गीत में जान बन पड़ी। फिलहाल श्रोताओं, आपको याद होगा कि सन 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा के अलावा उन्हें 1973 में आई फिल्म प्रेम पर्वत जैसी बेहतरीन फिल्मों में संगीत देने के लिए उस दौर में काफ़ी सराहा गया। उन्होंने रेशमा और शेरा, गमन और अनकही जैसी फिल्मों में संगीत देने के लिए 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। और भाई, इस गीत में जो हमने आपसे बात की थी, जो यानी सुनवा चुके हैं हम, उसमें हम बोल गए थे जानिसार अख्तर साहब का वो गीत था, और उसमें संगीत तो जयदेव का है ही, क्योंकि हम बात भी एक ही संगीत कार्यक्रम में जयदेव साहब की कर रहे हैं। तो इस गीत में भी आवाज़ लता मंगेशकर की है, संगीत जयदेव का, और बोल बहुत खूबसूरत हैं इसके अंदर भी जानिसार अख्तर साहब।

श्रोताओं, एक फिल्म लैला मजनू से हम सब परिचित हैं। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर, रंजीता, डैनी जैसे कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया है। और इस फिल्म का संगीत मदन मोहन के साथ जयदेव ने भी दिया है। ये फिल्म उस दौर में भी काफ़ी सराही गई और अगर आज भी देखी जाए तो आज भी सराही जाएगी। इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में माना जाता है। इस फिल्म के गीतों को साहिर लुधियानवी ने लिखे और ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी और रंजीता के लिए लता जी ने गाए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, अजीज़ नाज़ा, शंकर शंभू और साखियों की आवाज़ों।

इस बेहतरीन संगीतकार का निधन 6 जनवरी सन 1987 को हुआ और आने वाली तीन अगस्त को हम इनकी जयंती मनाएंगे, तो उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप ये आज का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक ही संगीतकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार जयदेव पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अपराह्न 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने वाले हैं, अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। श्रोताओं, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से, कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों, कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आपने कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहां आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
0: जी।
1: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं
0: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस है, जो बेटर हाफ है, वो बहुत ही खूबसूरत है और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
1: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शी इज द वन, वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
1: नहीं देखिये, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
1: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
0: अच्छा।
1: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे, दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
0: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हो, वहाँ की टीचर्स हो, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेस ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
1: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है, भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मैं इसमें काफ़ी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
0: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
1: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा।
0: वाह क्या बात है, क्या
1: मतलब
0: बात है?
1: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई।
0: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए, कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं जरूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी भी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहां तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्जाम जरूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्जाम जरूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूं, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया, और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। 7ों के 7ों एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
0: अच्छा,
1: सो 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया।

0: और आठ के आठ में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम सात रुक के रह गए. मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने. और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं सात में से हम चार वापस आर्मी के अंदर आ गए.
1: क्या बात है. कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं. तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
0: हम ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से. वहां पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे. एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज था. एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था. तो हम चार थे. तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था. तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी. क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए. तो वहां हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है. जब वो एग्जाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और. सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था. तो मैंने ये एग्जाम दे दिया, और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया. उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया.
1: अच्छा.
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए. सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई. और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया है. तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का. तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है. जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है. तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया.
1: अच्छा.
0: अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ जीटीओज वाला जो काम था वो भी आ गया. तो वहां फिर लाइनअप लगी. तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले. तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ.
1: अच्छा.
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली. सो आई हैड टू एक्सटेंड माय लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा. अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई. और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस. मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता.
1: क्या बात है. अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी. अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन, जैसे आपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे. आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार. क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी.
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ के.
1: क्या
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश में भीगू और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया.
1: वाह.
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे. अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे

0: उतार सकते हो. हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम. नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी.
1: अच्छा.
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी. पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है. सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी. मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ.
1: अच्छा.
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए.
1: क्या बात है. वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया. और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है. तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूं कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहां रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें ये नजर नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं। बोला आपके जमा होते रहेंगे, आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया. हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को ही.
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं. तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की. उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए.
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है. अच्छा, कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ.
0: अच्छा.
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा. लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे. और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में. तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था. और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला. तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था. तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन. और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं. तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया. मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा. लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन. सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड. मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर. सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें.
0: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए. तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लवर हैं, किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पे आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा.
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी.
0: अच्छा,
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ. मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं. मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले. सो गौरवान्वित तो मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए. हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे.
0: वाह, क्या बात है. ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग. आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है. क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था. इसमें कोई शक नहीं है मुझे. आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं. मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे. और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं. मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए.
0: बहुत खूब, बहुत खूब. तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर.
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर.
0: जी,
1: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहां शादी हो गई. सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है. अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई.
0: वाह क्या बात है. तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में तो जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं. तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे. उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की. अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. एंड वी गॉट मैरिड.
0: क्या बात है.
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी.
0: वाह क्या बात है, क्या बात है. मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई. और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई. अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं.
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए. कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं. आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं. कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में. उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई. जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा. दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी. बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है. जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर.
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी. कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर. वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई. अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए. दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई. एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए. मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528 वहां आपके सामने बैठा है. हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए. मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए.
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूं. एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूं जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जिस वक्त सुन रहे होंगे. वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद. किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं. और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग लेने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है. I could see कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज. किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहां साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए. आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन. हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं. एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ.
0: अभी तक
1: ये वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है.
0: वाह.
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है. और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है. इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी. और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि I have to relive. मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ. मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी. एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है.
0: आपने आज निशब्द कर दिया. आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा. और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं. क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं. बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी. अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में, मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो. देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए.
0: बहुत खूब. यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूं. एक वो पल जहां आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहां पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहां पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहां आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है. मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं. अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल. दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा. तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर. सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर
0: क्या?
1: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो ओपी ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
0: क्या बात है।
1: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
0: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज्यादा खुश है आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

0: नमस्कार, सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा कल ही ये विधेयक पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कर दी है। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित किया जा चुका है। इस विधेयक का
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार, मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सामाइन, हमारा देश भारत एक ऐसा देश जो समर्थ है, सशक्त है, जिसके हर नागरिक का स्वास्थ्य ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक उन्नत देश की नींव उसकी स्वस्थ पीढ़ी पर टिकी होती है, और स्वस्थ पीढ़ी की कल्पना करना तब तक अधूरा है जब तक हम कुपोषण को

विस्तार से। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 जून 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि यानी गर्भावस्था के 4 महीने के बाद प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज दिया जाता है। इन देखभाल सेवाओं में खून की कमी, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, गर्भ के दौरान मधुमेह का प्रबंधन, उनके लिए उचित प्रसव योजना और जटिलता की तैयारी, कुपोषण से पीड़ित महिलाओं में रोग का पता लगाने और उचित प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्ण देखभाल सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। यदि किसी माह में 9वीं तारीख को रविवार या अवकाश हो जाता है तो उससे अगले कार्य दिवस में ये कैंप लगाए जाते हैं। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक या सरकारी अस्पतालों पर उपलब्ध कराया जाता है। एकल खिड़की प्रणाली के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस योजना का लाभ उठाने वाली गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और जरूरी सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जा चुके हैं। गर्भवती महिलाओं को मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाएं भी दी जाती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का पता लगा सकते हैं और अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ये थी जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की और अब जानकारी राष्ट्रीय पोषण मिशन की। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की घोषणा की। राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस अभियान के तहत हर साल बच्चों में बौनापन या अल्प विकास, अल्प पोषण, कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। इस मिशन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मां के गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो साल तक के होने का समय सबसे कीमती होता है और इस दौरान सही खान पान, जन्म के 6 महीने तक केवल मां का दूध और उसके बाद पौष्टिक ऊपरी आहार बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। इस मिशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर के माध्यम से हर बच्चे की ग्रोथ पर नजर रखती है और हर साल सितंबर माह में पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाया जाता है पूरे देश में और पोषण माह को सितंबर के रूप में जन आंदोलन भी चलाया जाता है। तो आज ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। श्रोताओं, जब हमारे देश को मिलेगा सही पोषण तभी तो होगा हमारा देश रोशन।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

पहली जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात 9:30 पर होगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। रात 10 बजे प्रसारित होगी संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा ज्ञान संस्कृति और सामाजिक विकास का आधार पुस्तकालय। वार्ताकार होंगी फरहीन। कृषि जगत में शाम 6:05 पर डॉक्टर स्नेहल निर्वाण उप पशु चिकित्सा अधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा पशुओं में गलघोटू रोग कारण लक्षण और बचाव। शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें डॉक्टर प्रवीण कटारिया की वार्ता का विषय होगा भारतीय समाज के सटीक प्रतिबिंब के रूप में प्रेमचंद का साहित्य। छाया गीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर।

सुगम संगीत कार्यक्रम का वक्त रहेगा शाम 7:32 पर। इस कार्यक्रम में गुलाम हुसैन साबरी और साथियों के स्वर में आप सुनेंगे कव्वाली। गीत संध्या कार्यक्रम का वक्त रहेगा रात 8:15 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल की प्रमुख कार्यक्रमों पर। वंदना कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 6:05 पर और श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण होगा कल सुबह 6:30 पर। गांधी कथा आप सुनेंगे कल सुबह 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम में कल पूर्वाहन 7:05 पर जानकारी दी जाएगी बच्चे के लिए माँ का दूध विषय पर। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा गृह वाटिका के नए आयाम। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का वक्त रहेगा कल पूर्वाहन 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे भुवनेश गिरी के स्वर में रागनी। जागरूक श्रोता कार्यक्रम होगा कल पूर्वाहन 10:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त रहेगा कल सुबह 11:30 पर। हमारी बेड़ियां, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:00। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:15 पर पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा। घर संसार कार्यक्रम में वंदना राजपूत की वार्ता का विषय होगा जंगल और वन्य जीव संरक्षण में आम आदमी की भूमिका। कार्यक्रम का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:15 पर। जौनसारी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे कल अपराह्न 1:45 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगे रविन्द्र वर्मा। और कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सुनेंगे अटल वयो अभ्युदय योजना और वयो श्रेष्ठ सम्मान योजना के बारे में जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: दोस्तों, अक्षी के साथ मौजूद हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर मदिहा रहमान।
0: वैसे मदिहा, तुम्हें पता है आज से ना स्पेशल मंथ स्टार्ट हो गया है।
1: स्पेशल मंथ? स्पेशल मंथ मतलब?
0: मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा। वैसे इसका मतलब ये है कि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है।
1: अच्छा, सावन का महीना।
0: हाँ जी हाँ जी, सावन का महीना।
1: वैसे अक्षी, सावन के बारे में क्यों ना तुम कुछ हमारे लिसनर्स को बताओ।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं मदिया। सावन सावन यानी बारिश की ठंडी फुहारे और हरियाली की चादर, फूलों की और झूलों की मस्ती, कजरी की मिठास और तो और भोलेनाथ की भक्ति का ना अद्भुत संगम है ये सावन।
1: ये तो है। वैसे अक्षी, सावन की हर बूंद यही कहती है, प्रकृति से प्रेम करो, जीवन मुस्कुराएगा।
0: जहाँ शिव का नाम हो वहाँ भय नहीं होता, और जहाँ सावन की फुहार हो वहाँ तो मदिहा मन उदास हो ही नहीं सकता।
1: दोस्तों, और सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, आस्था, प्रेम और नई उम्मीद का उत्सव है।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं और सुनते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं इस गीत के साथ।

0: वैसे तुम्हें पता है, सावन हमें ये भी सिखाता है कि जैसे सूखी धरती होती है ना, और बारिश से वो फिर हरी हो जाती है, वैसे जीवन में विश्वास और धैर्य हमें फिर से खिलना सिखाते हैं मदिया।
1: बिल्कुल अक्षी, सावन के इस मौके पर कई जगहों पर झूले डाले जाते हैं, लोग गीत गाए जाते हैं और महिलाएं मेहंदी लगाकर इस मौसम की खुशियां मनाती हैं।
0: और तो और, ये महीना संस्कृति, परंपरा और प्रकृति, इन सभी का, तीनों का ना एक बहुत ही सुंदर संगम भी है।
1: वैसे अक्षय, तुम्हें पता है कि सावन में केवल पूजा ही नहीं बल्कि पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप पेड़ भी लगाएं और प्रकृति की रक्षा भी करें और अपने रिश्तों में भी प्रेम की हरियाली बनाएं।
0: जी हाँ दोस्तों, आपका सावन मंगलमय, सुखमय और खुशियों से भरा रहे।
1: तो अब जब बात चल ही रही है, तो दोस्तों क्यों ना आप लोग एक काम कीजिए, एक पेन और कॉपी उठा लीजिए।
0: और नोट कर लीजिए हमारा बूझो तो जाने का सवाल।
1: तो हमारा आज का सवाल है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को जोड़ती है?
0: जी हाँ दोस्तों, जिसका सही जवाब आपको लिख भेजना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में। और जब तक आप जवाब लिख के भेजते हैं, तब तक आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत सावन का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: सुनती हो?
5: हाँ हाँ, बोलिए।
4: अर्ज करता हूँ कि जग घूमिया।

0: थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई।
1: घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ वरना दिमाग घूमिया तो म्हारे जैसा ना कोई।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
0: दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट जो कि है कुछ खास है आज, जिसमें आज आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के बारे में।
1: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं।
0: दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हर मुश्किल सफर को आसान बना देता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब एक सच्चा दोस्त बिना कुछ कहे आपका हाथ थाम लेता है।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लाइन है, दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मिले, दोस्ती तो वो है जो हर पल दिल में रहे। दोस्तों हमारी जिंदगी के वो एक किरदार होते हैं दोस्त, जो हमारी हंसी की वजह भी बनते हैं और हमारे आंसुओं की वजह पूछने वाले पहले इंसान भी बनते हैं।
0: दोस्तों, इसीलिए हर वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में दोस्ती, आपसी सम्मान, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित कर 30 जुलाई को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप घोषित किया। उसके बाद से ये हर साल मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम भी मनाते हैं ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इस गीत के साथ।

0: दोस्त तो सच्चा दोस्त आईने की तरह होता है, जो हमारी कमियां भी दिखाता है और हमें बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास मौके पर अगर आपका कोई भी दोस्त आपसे दूर है या किसी बात पर नाराज है, तो जल्दी से उठाएं अपना फोन और डायल कीजिए उसका नंबर और जल्दी से उसको मैसेज कर दीजिए, और जिससे कि आपकी दोस्ती और भी अच्छी हो जाए।
0: दोस्तों यकीन मानिए, शायद वो संदेश किसी रिश्ते को फिर से मुस्कुराने की वजह बन जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, दोस्त सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं है, असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी आपका हौसला बनाकर खड़ा रहे।
0: तो आइए दोस्तों, आज के इस अवसर पर एक संकल्प लेते हैं।
1: हम
0: हम
1: अपने
0: अपने
1: दोस्तों
0: दोस्तों का
1: का
0: सम्मान
1: सम्मान
0: करेंगे,
1: करेंगे,
0: उनका
1: उनका
0: साथ
1: साथ
0: निभाएंगे
1: निभाएंगे
0: और
1: और
0: हर
1: हर
0: रिश्ते
1: रिश्ते
0: में
1: में
0: विश्वास
1: विश्वास
0: और
1: और
0: अपनापन
1: अपनापन बनाए
0: रखेंगे।
1: रखेंगे।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: सविता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
3: हाँ जी हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे?
5: मेरी जेब में मैंने कुछ पैसे रखे थे, तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले?
3: हाँ निकाले, मुझे कुछ जरूरत थी तो मैंने निकाल लिए।
5: अरे जरूरत थी तो मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी?
3: देखिए जी, कब तक मैं मांगती रहूंगी, अब मुझे आत्मनिर्भर बनना है।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम में एक वार्ता का, जिसकी वार्ताकार है फरहीन, और उसका विषय रहेगा ज्ञान संस्कृति एवं सामाजिक विकास का आधार पुस्तकालय।
7: पुस्तकालय आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय की बहुत बड़ी भूमिका है, बल्कि लोगों को नई सोच देने का भी काम करता है। यह आने वाले लोग नई नई बातें सीखते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और सही गलत की समझ को भी विकसित करते हैं। अच्छी किताबें इंसान की सोच बदल सकती हैं और उसे एक बेहतर नागरिक बना सकती हैं। यही वजह है कि हर शहर हर गांव में अच्छे पुस्तकालय का होना भी ज़रूरी है। गांव में रहने वाले बच्चों और युवाओं के लिए पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं है। जिनके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, वे भी यहाँ आकर आराम से पढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी यहाँ बहुत मदद मिलती है। किसानों को खेती से जुड़ी नई जानकारियाँ मिलती हैं। महिलाएं स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और अपने काम से जुड़ी बातें सीखती हैं। इस तरह एक छोटा सा पुस्तकालय पूरे गाँव की सोच बदल सकता है। आज इंटरनेट और मोबाइल का समय है, इसलिए अब पुस्तकालय भी बदल रहे हैं। पहले जहां सिर्फ छपी हुई किताबें मिलती थी, अब वहीं मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए ई बुक, ऑनलाइन पत्रिकाएं और दूसरी ज़रूरी जानकारी भी आसानी से मिल जाती हैं। इससे घर बैठे भी पढ़ाई करना आसान हो गया है। फिर भी किताब हाथ में लेकर पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है, इसलिए ऑनलाइन और पारंपरिक दोनों तरह के पुस्तकालय आज भी बराबर ज़रूरी हैं। आज पुस्तकालयों के सामने कुछ दिक्कतें भी हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ने के बजाय पूरा समय मोबाइल पर बिताने लगे हैं। कई जगह अच्छी किताबें और सुविधाएं भी कम हैं। गांवों में अभी भी बहुत से लोगों को पुस्तकालय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अगर सरकार और समाज दोनों मिलकर इस ओर ध्यान दें तो इन दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है। पुस्तकालय हमें केवल पढ़ना ही नहीं सिखाता, बल्कि सोचने, समझने और जीवन में आगे बढ़ने की राह को भी दिखाता है। यही वह जगह है जहाँ से सपनों को नई उड़ान मिलती है। अगर हर व्यक्ति किताबों से दोस्ती कर ले तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए हमें पुस्तकालयों से जुड़ना चाहिए, पढ़ने की आदत बनानी चाहिए और ज्ञान की इस रोशनी को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर किताबों से दोस्ती कर लेते हैं। पहले के समय में लोग अपना ज्ञान बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, लेकिन इस तरीके में ज्ञान के खो जाने का डर बहुत रहता था। जब लिखने की कला विकसित हुई तब ताड़पत्र, भोजपत्र और हस्तलिखित ग्रंथों में ज्ञान को सुरक्षित रखा जाने लगा। आगे चलकर इन्हीं संग्रहों ने पुस्तकालय का रूप ले लिया। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकालय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में था। वहाँ ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गणित और दर्शन से जुड़ी लाखों किताबें थी। इसके अलावा यूनान, रोम, चीन, अरब देशों में भी ज्ञान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी प्राचीन समय में ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और बाद में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह किया गया, जिससे पुस्तकालयों का विकास हुआ। भारत के प्राचीन पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह का स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा, शोध और ज्ञान के बड़े केंद्र थे। अब हम प्रमुख प्राचीन पुस्तकालयों के बारे में जानते हैं, जो जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे भारत का सबसे प्राचीन सुप्रसिद्ध पुस्तकालय माना जाता है। इसका नाम धर्मगंज था। इसमें लाखों की तादाद में हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित थे। कहा जाता है कि इसके विशाल संग्रह में आग लगने के बाद वह कई महीनों तक जलता रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय पर आते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत का महान शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर वेद, आयुर्वेद, राजनीति, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन से संबंधित अनेक ग्रंथ मौजूद थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुस्तकालय पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय गुजरात में मौजूद है। यह गुप्त काल के बाद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ धर्म, साहित्य, राजनीति और अर्थशास्त्र के अनेक ग्रंथ संग्रहित थे। अब आते हैं औदन्तपुरी विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में मौजूद है। यह भी एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ अनेक दुर्लभ पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं। इन प्राचीन पुस्तकालयों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध बनाया और विश्व भर के विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणों और समय के प्रभाव से इनमें से कई पुस्तकालय नष्ट हो गए, फिर भी इनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय माना जाता है। पुस्तकालयों से जुड़ें और ज्ञान की इस रोशनी को हर घर तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि जब समय के साथ समाज पढ़ता है तभी समाज आगे बढ़ता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, समाज को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आखिर में बस इतना सा पैगाम देना चाहूँगी, चराग इल्म जलाओ तो अंधेरे ही छट जाएंगे। किताबों से जो रिश्ता हो तो रास्ते खुद ही बन जाएंगे। यही पैगाम है। किताबों से दोस्ती कीजिए, इल्म के उजाले हर मंजिल तक पहुँच जाएंगे।

0: तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने बोझो तो जाने के अंतर्गत आपसे किया था एक सवाल, और हमारा आपसे सवाल था, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को जोड़ती है, जिसका सही जवाब है इंडिया और श्रीलंका। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमें सही जवाब भेजने वाले हमारे दोस्त कौन कौन शामिल है।
1: तो हमारे दोस्तों के नाम है जगदीश झाकर, शाहजी भोट के, विष्णु टेलर, अरविंद कुमार, नरेश मल्होत्रा, नीतू ताज अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, अनिल विनोचा, निसार सलमानी, जाकिर मंसूरी, हिमकेश्वर साहू, हीरामणि वर्मा, सुदर्शन शाह, बबलेश पवार, संजय ढींगिया, दिनेश वर्मा, गजानन येले, विथन सुरोशे, राम कुमार रेवार, मुकेश कश्यप, सुभाष गोडारा, राजकुमार दूदी, देवशंकर तामुरिया, अशोक सिंह, शमसुल कमर राही, मोहम्मद खलील कुरैशी, धर्मेंद्र छिपा, मीरा सिंह, मोहम्मद जाहिद अली, नानक खन्ना, प्रवीण सोनी, सुरेश गगनेजा, शकील अहमद इदरीसी, मोहम्मद असलम सैफी, इरशाद अहमद, मोहम्मद सईद अब्बासी, राजेश वर्मा, राजपाल गजबई, भगावत चौबे, लाडले जी, मोहम्मद रफीक पवार, बलवंत कुमार वर्मा, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद हसनैन पवार, नवीसन अब्बासी, मोहम्मद फरमान, अभिजीत घावकर, नजमुल हुदा जावेद, गंगा सिंह रावत, प्रवीण चौहान, रवि कुमार राहुल और शाहरुख नूर अंसारी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं, और हमें खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। इसी के साथ दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम को सबको फॉलो कर लीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसी के साथ मुझे अक्षी त्यागी और मेरी साथी मदिया रहमान को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते हैं इस गीत को आपके साथ।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मीटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मीटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मीटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह

0: ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी, देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो, हम कह रहे थे कि बरसात ना होने की दिक्कत का, तो भाई बिल्कुल बरसात तो अब होने लगी है धीरे धीरे। भाई सावन का महीना भी शुरू हो गया है, तो भाई देखो जैसे कहते हैं ना कि भैया सावन को बाँ पकड़ा दी भैया बरसात ने, तो भैया आज सावन का पहला दिन है और भैया बारिश भी हो गई और भाई दिन भी अच्छा हो गया और भाई मौसम देखो सुहावना हो गया। हमारी जो धान की फसल है वो भी हमारे भाइयों की इस समय अच्छी खड़ी है और भाई देखो सिंचाई की आवश्यकता उसमें पड़ रही थी, तो देखो ऊपर वाले ने सिंचाई हमारे किसान भाइयों की कर दी है धान की फसल की। तो अब भाई जब बात धान की हम कर रहे हैं, तो धान से एक बात और करो लें थोड़ी सी कि भाई देखो धान की जिन किसान भाइयों ने रोपाई कर दी, भाई वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी धान की फसल में निगरानी बना कर रखा। साथ ही साथ कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो अब भी भैया पछेती धान की बुआई या रोपाई कर रहे हैं, तो भैया वो जो है समय रहते एक आध दिन में भैया ये रोपाई पूरी कर लें। साथ ही साथ क्योंकि भाई ऐसा कह दिए हैं कि भाई ज़्यादा पछेती फसल भी लाभदायक नहीं होती है, तो भाई हमें जो है काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में दो पैसे बचें। तो भाई हम जो है समय से अपनी फसलों की रोपाई करनी है, समय से अपनी फसलों की निगरानी करनी है और समय से अपनी फसलों में भैया रोग प्रबंधन करना है। तो भाई इसी तरह से जब बात गन्ने की आव है, क्योंकि गन्ने की हमारी नकदी फसल है, तो भाई गन्ने की फसल में इस समय देखो बेल यानी के जो भैया खरपतवारों में आती है वो काफ़ी खड़ी है, साथ ही साथ हमारे किसान भाई उसका भैया नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो भाई देखो इसके नियंत्रण के लिए 240 सबसे अच्छा काम करती है और हमारे किसान भाई स्प्रे भी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई ये जो है ऐसा होता है कि भैया हमारे जो गन्ने की फसल होती है उस पर भैया एक तरह का ऐसा जाल टाइप का बना लेती है जिससे हमारी फसल को हवा धूप नहीं मिल पाती है और हमारी फसल जो है बढ़वार नहीं कर पाती है। तो भाई उसका नियंत्रण यानी कि बेल वाले खरपतवारों का नियंत्रण आप समय से कर लें। अब भाई कुछ बातचीत देखो खेती किसानी की करो ले हैं, क्योंकि भाई खेती किसानी की तो हम बात कर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ भाई अपने पशुओं की बात भी करनी जरूरी रहती है। तो भाई देखो खेती की बात तो हम कर ही रहे हैं, खेती किसानी से जुड़ा ही व्यवसाय है पशुपालन। भाई पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। तो भैया जब बात हम पशु करते हैं तो पशु तो हमारे किसान भाई पालते ही हैं, रखे भी हैं और भाई एक दो पशु हमारे किसान भाई दूध का भी रखे हैं, जिससे भैया घर में बच्चों को दूध मिलो जाहा पीने को और भाई हमारे किसान भाई भी और हमारे जो बच्चे हैं वो भी भैया कुछ शरीर से और मन से तन से सुदृढ़ बने रहते हैं। भाइयों घर का दूध तो देखो घर का ही हो है, भाई घर के दूध की तो बात ही अलग है, घर की दही हो घी हो देसी और भाई अन्य कामों में लेते हैं भाई जब जी करे पनीर खाने का, क्योंकि आजकल हमारे भाई देखो शहरों में भैया होटलों में बैठ कर पनीर खावा, भाई वो पनीर इतना बढ़िया थोड़ी हो है। जो घर का पनीर हो तो भाई कभी हो जब जी करे जब घर में पनीर फाड़ लो दूध दूध का और भाई पनीर खाओ। तो भाई देखो हमारे किसान भाई ये सारे काम तो करे ही करे हैं, साथ ही जब भैया हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब हम अपने पशुओं को दूमा तो भाई उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी यो बरतनी है कि जब भैया हम अपने पशु को दुहने के लिए बांधें कहीं को भी, तो भाई वो ऐसा स्थान होना चाहिए यानी कि वो एकांत होना चाहिए जहाँ पर हमारा पशु चौंक कर ना, किसी चीज़ से डरे ना, या भैया साफ सुथरा और सूखा वो जो स्थान होना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और जो हमारी पशुशाला हो या भैया बाहर कहीं हम दूधते हैं पशु को तो भैया वो जो है गिल्ला हो जाता है बरसात में या भैया नमी सी बनी रहती है, मक्खी मच्छर हमारे पशु को लगे हैं, तो भाई ऐसे स्थान का हमें चयन करना जहाँ पर पशु हम दूमें, अपना पशुशाला हो या अंदर जहाँ भी हमें बांधना है वो सूखा स्थान होना चाहिए जहाँ मक्खी मच्छर हमारे पशु को ना लगे। यानी मक्खी मच्छर यदि वहाँ हैं तो भैया आप थोड़ा सा धुआं कर दें कड़वा नीम की पत्तियों का, जिससे भैया मक्खी मच्छर हमारे पशु को ना लगे। दूसरे भाई थोड़ी सी बात हमें यो ध्यान रखनी है कि भैया जिस बर्तन में हम अपने पशु को दूहने के लिए भाई बर्तन रखे हैं या ले जा रहे हैं तो भाई वो साफ सुथरा होना चाहिए, हम हाथ जो हमारे हाथ हैं वो साबुन से धुले हुए होने चाहिए और एक भैया कपड़ा या एक तौलिया हमारे पास होनी चाहिए जिससे भैया हम अपने पशु का जो अयन होता है जो बाँक होता है दूध का भैया उसको पहुँच सकें, ताकि पानी जो है जब हम दूम हैं कुछ भाई ऐसा काम करें कि भैया मुट्ठी जब बंद हैं तो भैया कुछ दो चार बूंदे पानी की जो है हमारे दूध में भी टपकती रहे, तो ये जो है अशुद्धि का कारण बनती है हमारे दूध में। तो भाई अशुद्धि हमारे दूध में ना जावे, तो हमारे पास एक तौलिया या कपड़ा होना चाहिए जिससे भैया हम अपने हाथ साफ सुथरे कर लें और सूखे कर लें अयन को भी, ताकि भैया हम समय से अपने पशु का पूरा दूध निकाल सकें समय से। यानी कि हमारा जो दूध दूहने वाला व्यक्ति है या आदमी है, हमारी माता बहन है या हमारे बच्चे हैं, भाई उनको हम अपने पशु को दूहने के लिए 5 से 7 मिनट यानी कि 5 से 7 मिनट हमें रखनी चाहिए। क्योंकि भाई 7 या 10 मिनट के बाद जो है हमारा पशु जो है पूरा दूध भैया नहीं दे पाता है, वो थोड़ा सा ओझड़ सी महसूस करता। तो भाई हम जो है अपने पशु का 5 से 7 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में सारा दूध निकाल लेना चाहिए, ताकि भैया हमारा पशु पूरा दूध देवे, हमारे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी हो दूध बेच कर। और आजकल तो भैया गाँव गाँव डेयरी खुल गई, भैया हमारे किसान भाई जो अधिक दूध हो है उसको भैया डेयरी पर दे दें, अच्छा रेट मिले, अच्छी आमदनी हमारे किसान भाइयों को हो है। तो भाई देखो हमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए, पशु भी रखने चाहिए और अच्छा शुद्ध दूध हम पीना चाहिए। तो भाई ये तो कुछ बातचीत हो गई, देखो दूध दूहते समय सावधानी रखने की। अब भाई कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
2: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो भाई, संदेश के बाद एक बार फिर हमारे किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, हमने पशुओं की बात करी कि भाई पशुओं को किस समय कैसे कैसे दूना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और देखो, खेती किसानी की हम बात कर ही रहे हैं किसान भाइयों से कि भाई जो हमारी फसलें हैं, बरसात का मौसम है, चाहे भाई सूखा पड़ा है, हमारे किसान भाइयों को वो भी झेलना पड़ा है, चाहे भैया ज़्यादा बरसात हो, ज़्यादा भैया ओलावृष्टि हो, या अन्य कोई भी काम हो, भाई हमारे किसान भाइयों को सारा ही झेलना। तो भाई देखो, हमें यो पता होना चाहिए कि भाई हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लाभ होगा। तो भाई लाभ एक और चीज़ से होगा। भाई लाभ होने के लिए देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है हमारे किसान भाइयों के लिए, फसल बीमा योजना। भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को लाभ यो होगा कि जैसे हमारी जो फसलें होती हैं भैया, उसमें जो है सूखा पड़ जा, ओलावृष्टि हो जा, या भैया अन्य कोई काम हो जा, या हमारी फसल खराब हो जा किसी कीट के कारण, रोग के कारण, तो कुछ ना कुछ भैया हमारे किसान भाइयों को उस क्षति का भैया क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो भाई देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में हम थोड़ी सी किसान भाइयों से जानकारी करो लें, जानकारी किसान भाइयों को दियो दें थोड़ी सी। भैया देखो, भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, और भाई यहाँ अधिकांश लोग आजीविका का जो कारण है हमारे किसान भाइयों की, भैया वो खेती पर ही निर्भर लोग बाग हैं। और भैया हमारी जो फसल है, आज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे ओलावृष्टि हुई या अतिवृष्टि हुई, या भैया सूखा पड़ गया या बाढ़ के कारण, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और यहाँ तक कि नष्ट भी हो जाती है। तो भैया ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान भाइयों के लिए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भैया एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाइयों, इसका उद्देश्य है किसान भाइयों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसान भाइयों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करना, और भैया उन्हें जो है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की भरपाई करना। भैया इस योजना के अंतर्गत हम अपनी फसलों का बीमा कराना है, उसमें भी भैया हमारे किसान भाइयों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है, यानी कि खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए 1.5% और नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम बीमा राशि का देना होता है। मान लो हमने 2,00,000 का बीमा कराया, तो उस हिसाब से 2% जितने पैसे बैठे 1.5% में और 5% में, भैया हमें ध्यान रखना है कि कैटेगरी है उसकी नकदी फसलों की, रबी फसलों की और खरीफ फसलों की। तो भाई इस तरह से हमें प्रीमियम का भुगतान करना है और हमारे किसान भाइयों को भैया प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से बचना है। भाई जब हमारे किसान भाई क्षति से बच जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें जो है सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है, और भाई किसान भाइयों को खेती करने के लिए बीज के लिए भैया प्रोत्साहित करती है। तो भाई इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई अवश्य उठावें, और लाभ ले कैसे, भाई लाभ हमें मिलेगा ऑनलाइन के माध्यम से। भाई या तो आप अपने बैंक आसपास के बैंक के में भैया ऑनलाइन करा लें, या भैया काफ़ी ऐसे सेंटर चल रहे हैं जिनमें आप जो है किसी निजी बीमा कंपनी से भी ऑनलाइन कराकर बीमा कंपनी को भैया बीमा करा सकते हैं। इस तरह से आप भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें और भाई अपनी खेती किसानी से भैया अच्छी आमदनी प्राप्त करें। भाई देखो, ये तो होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बातचीत। भाई इससे पहले देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे पहले हम पशुओं की बात कर रहे थे। तो भाई आजकल देखो, पशु जो हमारे हैं भैया, बरसात का मौसम है और काफी तरह के रोग हमारे पशुओं में आ जाते हैं। तो भाई पशुओं में गलघोटू रोग, कारण, लक्षण व बचाव के संबंध में आज किसान भाइयों के लिए हम एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है पशुओं में गलघोटू रोग, कारण, लक्षण व बचाव। जानकारी दे रही है डॉक्टर स्नेहल निर्वाण, जो कि उप पशु चिकित्सा अधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया सुवेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: किसान भाइयों, हम सभी पशुपालन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें और उनमें कोई भी बीमारी ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि अच्छे तरीके से देखभाल करने के बाद भी हमारे पशुओं में बहुत ही खतरनाक बीमारी गलघोटू हो जाती है और इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी पशुओं की क्षति होती है। तो किसान भाइयों, ये गलघोटू बीमारी क्या है, ये किस तरीके से हमारे पशुओं को बीमार करती है और कैसे हम इससे अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं, तो आज इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर स्नेहल निर्वाण, जो कि उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग जानसठ मुजफ्फरनगर में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद शुभेंदु जी।
3: तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जो पशुओं में ये गलघोटू रोग होता है, ये बीमारी होती है, ये किस तरीके से हमारे पशुओं में फैलती है, कैसे ये बीमारी लग जाती है डॉक्टर साहब?
4: जी, ये जो गलघोटू की बीमारी है ये एक जो है महत्वपूर्ण संक्रामक बीमारी है।

0: या इसको रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया या पास्चुरोलोसिस भी कहते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसे घुर्रका, गला फूलने वाला रोग या गर्दन सूजने वाले रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो हमने कहा रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, यह इसलिए पड़ा क्योंकि यह जीवाणु रक्त में फैलकर पूरे शरीर को संक्रमित कर देता है। इस रोग का मुख्य कारण एक जीवाणु है जिसका नाम है पास्चुरल्ला मल्टोसिडा।
1: जी,
0: यह जीवाणु सामान्य परिस्थितियों में भी पशुओं के श्वसन तंत्र में रहता है, परंतु जब पशु तनाव की स्थिति में आ जाता है तो रोग उत्पन्न हो जाता है। और कई बार देखने में जो पशु स्वस्थ दिखाई देता है उसमें भी यह रोग उपस्थित हो सकता है, तथा जिन पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है उनमें रोग जो है पशुओं में प्रकट होकर आता है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर, देखिए, आपने गलघोंटू रोग के बारे में बताया कैसे ये रोग हमारी पशुओं में आता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। अब बात यह आती है कि वैसे तो देखिए, इसमें आपने बताया है कि गलघोंटू, जैसे कि इसमें गला घुट जाता है और घुरका, इसमें घुरघुर की आवाज आती है, लेकिन अगर हम और दूसरे लक्षणों की बात करें और ये हमें निश्चित हो जाए कि हमारा जो पशु है वो गलघोंटू बीमारी से ग्रसित हो चुका है, बीमार हो चुका है, तो और कौन कौन से लक्षण आते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वास्तव में हमारा पशु गलघोंटू से पीड़ित हो चुका है?
0: जी शुभेंद्र जी, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण के लिए पहले तो मैं बता दूं कि ये रोग जो है मुख्यतः जो आजकल का समय चल रहा है बरसात के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है। बरसात के मौसम में ही ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में नमी होती है।
1: अच्छा।
0: और नमी होने के साथ साथ तापमान में अचानक परिवर्तन होता है, कभी तापमान ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो पशु जो है उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है। साथ ही जब ऐसे मौसम में पशुओं को हम अत्यंत थोड़ी लंबी दूरी पर लेके जाएं या उसके पोषण में कमी आए, उस स्थिति में भी यह रोग दिखाई देगा। मुख्यतः जैसे हम गाय भैंस की बात करें, यह जो वयस्क पशु हैं उनकी तुलना में जो युवा हमारे पशु हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। लक्षण जो है, सबसे पहला लक्षण होता है इसमें तेज बुखार आना।
1: अच्छा।
0: जो कि 105 डिग्री फारेनहाइट से भी ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही पशु आपको बहुत सुस्त दिखाई देगा, वो चारा खाना कम कर देगा, दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध उत्पादन अचानक से तेजी से घट जाता है।
1: जी।
0: और अगर विशिष्ट पहचान की बात करें, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये गला सूजने वाले रोग के नाम से भी जो है विख्यात है, इसमें गले, गर्दन और कभी कभी छाती तक भी सूजन दिखाई देती है और वह बहुत ही पीड़ादायक भी होती है।
1: अच्छा।
0: पशु को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, धीरे धीरे सांस तेज और भारी होने लगती है, जिससे कि उसके गले से घुर घुर की आवाज आती है, इसीलिए इसका नाम घुरका रोग भी है। नाक से पानी आता है, कई बार उसे म्यूकस भी आ सकती है, मुंह से पानी आता है, झाग आता है, पशु कई बार देखेंगे तो वो गर्दन को आगे करके और पैर फैला के खड़ा होता है, जैसे उसको लगता है कि वो ज्यादा कोशिश करता है कि वो आराम से सांस ले सके, क्योंकि उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही होती है। तो ये इसके खास लक्षण है। और अगर इस स्थिति में उसको उपचार ना मिले तो 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, आपने बात बताई है कि ये सारे लक्षण आते हैं, इस तरीके से हम पहचान करते हैं, लेकिन ये जो हमें पहचान होती है उस समय होती है जब हमारा पशु बिल्कुल पूरी तरह से बीमारी की चपेट में आ जाता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, दम उसका घुटने सा लगता है, घुड़घुड़ की आवाज आती है। क्या कुछ ऐसे भी लक्षण है, क्या ऐसी भी कोई पहचान हो सकती है कि बीमारी से 2-3 दिन पहले हमें पता चल जाए, जब हमारा पशु सामान्य सा ही लगे कि ये बीमारी आने वाली है पशु में?
0: ऐसे हम ये तो नहीं कह सकते कि 2-3 दिन पहले हमें पता चल जाए, लेकिन जैसे हमने बताया कि यह रोग मुख्यतः बरसात में होता है
1: जी,
0: तो उसको हम पता तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इस रोग से बचाव किया जा सके
1: जी।
0: तो अगर बचाव की बात करें तो बचाव के लिए हम पहले इसमें टीकाकरण करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि हमारा पशुपालन विभाग की तरफ से निशुल्क जो है ये मई जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण किया जाता है। तो अगर हम समय से इसका टीकाकरण करवा लेंगे तो इस रोग से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। रही बात पहचान की, अगर इन दिनों में हमें अपने पशु में कोई पहला ही लक्षण दिखाई दे, तेज बुखार आ रहा है या गले में हमें कोई सूजन दिखाई दे, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पहले लक्षण आते ही आप जो है पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज अवश्य कराएं, जिससे कि पशु हानि से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए मान लीजिए हमारा पशु बीमार हो जाता है और उसका गला भी सूज जाता है, उसको तेज बुखार हो जाता है, तो अगर गलघोंटू से हमारा पशु पीड़ित है, बीमार है, तो उसका इलाज हम कैसे करें डॉक्टर साहब?
0: हाँ।

0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके उपचार के लिए जैसे मैंने कहा यह जीवाणु जनित रोग है, ये जो है पाश्चुरल्ला मल्टोसिडा से होता है रोग जो है, तो इसमें हमारा कोई इस तरह का तो उपचार है नहीं कि हम कोई देसी उपचार इसका कर सकें।
1: जी
0: इसके उपचार के लिए हमें एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया इसमें दर्द होता है, उसमें जो सूजन होती है, बुखार होता है, तो इन सब के लिए दर्द निवारक दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, सूजन निवारक दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, साथ में कुछ ऐसी दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कुछ बढ़ा सकें।
1: जी
0: तो इसके साथ ही जो है हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हमें रोग के लक्षण दिखाई दें हम उसका तुरंत उपचार कराएं जिससे कि रोग को ज्यादा बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। हम जितना उसमें विलंब करते हैं, जीवाणु की जो इसमें गति होती है बढ़ने की बहुत तेज होती है, जैसे हम जानते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है पशु के सिस्टम में, तो इसलिए अगर हम इसको जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम इसको सुखद हमें परिणाम मिल सकते हैं, वरना इसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है अगर उसको हमें समय पर उपचार ना दे सकें तो।
1: बिल्कुल, देखिए आपने सही बात बताई है कि इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए हमारा कोई पशु बीमार है इस बीमारी से और हम ठीक तरीके से उसका इलाज भी करते हैं, तो कितने प्रतिशत चांस रहते हैं कि हमारा पशु बच जाए?
0: देखिए जैसे आपने कहा कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं
1: जी,
0: जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितना हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे बीमारी को तो उससे हमें जो है बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कई बार जैसे हमें शुरुआती लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा बुखार है या थोड़ा बहुत भी गले में सूजन है या थोड़ा सा भी वो कष्ट उसको दिख रहा है हमें सांस लेने में
1: जी,
0: तो अगर उसी समय हम पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेंगे तो मैं मानती हूँ कि 60-70% तक जो है हम पशु को बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस हमने अपने पहले जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या जहां पानी ज्यादा जमा होता है, जैसे मैंने कहा नमी के कारण,
1: जी, जी, जी.
0: तो उन क्षेत्रों में मैंने अपने जब देखा है मैंने ये केस, और वहां पे जैसे हम टाइम से पहुंच जाते थे तो वो पशु जो है हम बचा लेते थे। कई बार जैसे जो लोग हमें देर से संपर्क करते थे या गांव में मान लीजिए हम किसी का पशु देखने गए हैं, उसका तो हमने इलाज किया, दूसरे किसी को पता चला कि डॉक्टर साहब आए हैं वहां गए, तो कई बार वो हमें लेट अवस्था में पता चलता था कि इनका भी पशु बीमार है, तो वहां पे हमने मृत्यु होती भी काफी देखी है। बस सबसे अच्छी बात इस रोग की ये है, रोग बहुत गंभीर है, मृत्यु भी होती है, लेकिन हमारे पास टीकाकरण इसका मौजूद है जिससे हम इसको बहुत हद तक इस रोग से बचा जा सकता है। इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं, जैसे हमने कहा कि जो ये बीमारी है मुख्यतः बरसात में होती है, लेकिन दूसरी बात मैंने ये भी कहा जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के भी कई सारे कारण हैं, जैसे मैंने कहा बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उनमें भी यह रोग ज्यादा होता है। कई बार जब पशु किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होता है तो भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर हम बात करें अपने क्षेत्र में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने देखा है अभी तक, जैसे कई बार खुरपका मुंहपका बीमारी से पशु पीड़ित होता है, उसके साथ में भी यह बीमारी दिखाई देती है क्योंकि उस समय उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रखी होती है। तो उसमें जैसे जो खुरपका मुंहपका रोग है उसमें पशु नहीं मरता है, उसमें केवल आर्थिक क्षति होती है और पशु को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अगर खुरपका मुंहपका के साथ गलघोटू भी हो जाती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण, तो पशु की मृत्यु उसमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा है कि एक एक गांव में 20 से 25, 30, 35, 50 तक हमने पशु की मृत्यु देखी है, तब यह रोग जो है बहुत तेजी से फैलता है उस स्थिति में। तो इसलिए आवश्यक है कि बस सब तरह से जैसे कहें जो भी हमारे पास संक्रामक बीमारियां हैं जो कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती हैं, तो उनके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि टीकाकरण ही बचाव है और उसमें जो है कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। जब भी हमारे विभाग की टीम जो है आपके द्वार पर जाकर निःशुल्क टीकाकरण करने के लिए आती है उसका लाभ उठाना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आप नहीं करें।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है और अच्छे तरीके से अपने पशुओं की देखभाल करनी है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाइयों को क्या राय मशवरा आप देना चाहेंगे, किस तरीके से हमें इसकी देखभाल करनी है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है जिससे कि ये बीमारी हमारे पशुओं में ना होने पाए?
0: जी, बीमारी ना होने पाए उसका तो जैसे मैंने कहा ये जीवाणु जनित रोग है, तो हमें जो पशु के ही श्वसन तंत्र में मौजूद है, तो इसलिए हमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही बनी रहे, उस पर कोई बाहरी वातावरण का प्रभाव ना पड़े, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ठीक बनी रहे, इस

0: ध्यान रखना है। दूसरा, जो सबसे अच्छी जो बात मैंने बताई कि इसका जो है हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, समय से इसका वैक्सीनेशन कराना है। और ये तो हुई गलाघोटू की बात। इसके साथ ही, क्योंकि इस समय हमारे विभाग द्वारा खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अभियान जो है शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं पशुपालक भाइयों से यह अपील भी करना चाहूंगी कि आपके द्वार पर पशुपालन विभाग की टीम जब आए तो कृपया उसको सहयोग करें। उससे आपके ही पशुधन का लाभ होगा, आपका ही लाभ होगा और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि आपको भी आर्थिक क्षति नहीं होगी। तो कृपया इस वैक्सीनेशन में सहयोग करें तथा अपने पशुओं को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ पशु ही से ही समृद्ध किसान और सशक्त भारत की हम कामना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमें अपने पशुओं की देखभाल करनी है और समय से अपने पशुओं में टीके लगवाने हैं, चाहे वो गलघोटू का टीका हो या FMD का टीका हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस समय ये टीके लगाए जा रहे हैं, तो हमारे सभी बहन भाइयों को अपने पशुओं को ये टीके लगवाने हैं, जागरूकता के साथ में टीके लगवाने हैं और अपने पशुओं को गलघोटू और जो दूसरी बीमारी है उनसे हमें स्वस्थ रखना है। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में, और आपने पशुओं में गलघोटू बीमारी से बचाव के बारे में, उसके टीके के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भाई देखो, अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी पशुओं में गलघोटू रोग कारण लक्षण व बचाव के विषय में। और भाई देखो, जो डॉक्टर मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों को भाई गलघोटू रोग के संबंध में दी कि भाई क्या कारण इस रोग के हमारे पशु में लगने के होते हैं। भाई डॉक्टर मैडम ने बताया कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये हमारे पशु में लगता है। और भाई पहचान की बात जब हम करते हैं तो भाई पहचान हमारे किसान भाइयों को बड़ी आसान डॉक्टर मैडम ने बताई कि भाई जब हमारा पशु घर घर करे या लार टपकाए और भाई गले से उसके कुछ निगला ना जाए या खाए ना जाए, भाई पशु हमारा बीमार सा लगे, बुखार सा उसे एहसास हो, तो भाई हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पशु को गलघोटू रोग हो गया है या हमारा पशु गलघोटू रोग की चपेट में या पीड़ित है। तो भाई इस तरह से हमें लक्षण पहचान कर भाई उसका समय से बचाव करना है, नियमित भैया उसकी देखभाल रखनी है। साथ ही साथ भाई देखो, डॉक्टर मैडम ने एक बात और थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को जागरूकता की दृष्टि से बताई है कि भाई हम जो है जब भी हमारा पशु कोई बीमार हो, चाहे भैया गलघोटू ही नहीं FMD हो या अन्य किसी रोग के कारण बीमार हो, क्योंकि भाई पिछले वर्षों में देखो हमने लंपी देखा था, तो भाई किसी भी रोग के कारण हमारा पशु बीमार हो तो भाई हम जो है उस पशु को पशु के झुंड से, यानी कि जो हमारे सुरक्षित पशु हैं या जो भैया हमारे जो है रोग रहित पशु हैं, जो स्वस्थ पशु हैं, उनसे अलग बांधना चाहिए। उसका चारा दाना मिश्रण, खाना पीना सब उसका भैया अलग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि उसका पीने का बर्तन जो पानी पीता है भाई उसको भी अलग से ही हमें पानी पिलाना चाहिए। ये हमें सावधानी आवश्यक रूप से अपने पशुओं में बरतनी है, क्योंकि भाई ये गलघोटू रोग एक दूसरे में भी आसपास हो जाता है पशु को, तो भाई इस तरह का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखो, डॉक्टर मैडम ने रोग से बचाव के लिए कितनी अच्छी बात बताई कि भाई हम जो है समय से टीकाकरण करा लेना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर मैडम ने यह भी बताया कि भाई यदि हमारा पशु बीमार लग रहा है या ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई हमारा पशु कुछ ना कुछ किसी न किसी बीमारी से परेशान है, तो भाई हम जो है नज़दीकी पशु चिकित्सक को भैया दिखाना चाहिए। घर का डॉक्टर हमें कभी भी नहीं बनना चाहिए। भाई जो होशियार डॉक्टर हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, भाई उनसे संपर्क रखिए, उनसे संपर्क बनाकर भैया उनसे ही अपने पशु की जांच कराएं, इलाज कराएं। भाई घर की दवाई ऐसी वैसी या जड़ी बूटी आप उस पशु को ना खिलाएं, हो सकता है हमारा पशु किसी अन्य बीमारी के कारण परेशान हो और भाई हम दवाई दे दें कुछ और, तो भैया इससे जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों को कभी कभी भैया लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। और भाई पशुपालक हमारे किसान भाई ध्यान रखते भी हैं, वो जागरूक भी हैं, समय से अपने पशुओं में टीकाकरण कराते हैं, चाहे भाई गलघोटू हो, FMD हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो भाई यदि हम समय से अपने पशुओं का टीकाकरण करा लेंगे तो भाई हम अपने पशुओं को रोगों से, बीमारियों से बचा सकते हैं और भाई अच्छा दूध उत्पादन अपने पशुओं से ले सकते हैं। तो भाई देखो, जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया कि पशुओं को, क्योंकि आज हम अपने पशुओं से दूर होते चले जा रहे हैं, भाई हमारे किसान भाई भी गाँव में क्या काम करें कि भाई खेती तो वो कर रहे हैं लेकिन भैया अपने पशु को पालना पसंद नहीं कर रहे, भाई यानी एक लीटर दूध डेयरी पर से ले आएंगे, भाई वो दूध कामयाब नहीं होता, वो दूध जो है हमें इतना पोषक तत्व तो नहीं देता है जितना भैया हमारे घर का दूध। तो भाई घर का दूध घर का हो है, तो भाई आप जो है दुधारू पशु पाल लो और अपने बच्चों को भी अच्छा दूध शुद्ध दूध पिलाओ और बच्चों को बलिष्ठ बनाओ। तो भाई देखो जब इस तरह से आप अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे साथ ही साथ अपने परिवार का ध्यान रखेंगे तो भाई डॉक्टरों का खर्चा भी हमारे किसान भाइयों का बच जाएगा। तो भाई इस तरह से आप अपने खेती किसानी में लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ने का। तो भाई बात जब हम लाभ की करते हैं तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो भैया देखो किसान भाई भी कह रहे होंगे कि बातचीत ही करो जाएंगे, कुछ गीत संगीत भी सुनवाएंगे, तो बिल्कुल भाई किसान भाइयों को बिना देर किए लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे किसान भाइयों ने ये रागनी सुनी बीर सिंह शर्मा व साथियों से। सब चीजों में बदली हो गई, बहुत ही खान पान बदल गया, बेशर्मी की हद रही ना। तो भाई देखो, उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भाई देखो, आप मौसम को देखते हुए अपने सारे खेती किसानी के काम करें, साथ ही साथ देखो घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाइयों से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भैया आप हमें चिट्ठी पत्री लिखते रहें, क्योंकि आजकल आप हमारे चिट्ठी पत्री लिखते हुए थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। तो भाई आप चिट्ठी पत्री लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा और भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो आप हमें चिट्ठी पत्र लिखना ना भूलें, उसमें आप ये जरूर लिख दें कि आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नई जानकारी चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अवश्य लिखें। और भाई आजकल देखो सभी के पास बड़े फोन हैं, लैंडलाइन फोन, वो बड़े फोन है भैया उंगली से चलाने वाले। तो भैया आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर है 9457072788। भाई नंबर एक बार फिर लिख लें, 9457072788। भैया इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं, उसमें मैसेज में लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और जो भी आपका सुझाव है वो आप हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है भारतीय समाज के सटीक प्रतिबिंब के रूप में प्रेमचंद का साहित्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रवीण कटारिया।
1: मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू साहित्य के ऐसे लेखक हैं जिनका साहित्य भारतीय समाज का सटीक प्रतिबिंब माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की गिनती विश्व के उन 4 महान लेखकों में की जाती है जो अपने देश की जनता से पूरी शिद्दत से जुड़े रहे और साहित्य के माध्यम से जिन्होंने देश में राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक चेतना जगाने का काम किया। ये 4 लेखक हैं इंग्लैंड के चार्ल्स डिकिंस, रूस के मार्क्सिम गोर्की, चीन के लुसुन और हमारे देश के मुंशी प्रेमचंद। गोर्की ने अपने देश के सर्वहारा वर्ग की अथाह गरीबी व बेबसी और उसमें उभरती हुई क्रांतिकारी चेतना देखी थी। प्रेमचंद ने भी अंग्रेजों की गुलामी तथा रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक मान्यताओं में पिसते भयानक गरीबी व शोषण में सारा जीवन होम करते भारतीयों के सुख दुख को नजदीक से देखा था। महिलाओं की दुर्दशा, अछूतों की व्यवस्था और किसान मजदूरों की गरीबी को उन्होंने अपने अंतर में भोगा और अपनी रचनाओं में सजीव रूप से चित्रित किया। उन्होंने प्राचीन भारत की साम्राज्यवादी व्यवस्था में सामंतों महाजनों के विलास, पाखंडों और अत्याचारों का पर्दाफाश करके लोगों के मन में उसके प्रति घृणा पैदा की और उसमें विद्रोह करने की प्रेरणा जगाई। प्रेमचंद ने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया किंतु अपनी प्रखर चेतना के बल पर अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रीयता का उद्घोष किया। उन्होंने ग्रामीण जनता को देशभक्ति के आदर्शों से जोड़ा। उनका लेखन सामान्य जनजीवन के संघर्षों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वे कलम के सिपाही कहलाए। एक सजग लेखक के नाते उन्होंने उन सभी तत्वों, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं का विरोध किया जो तत्कालीन व्यवस्था को पंगु बनाए हुए थी। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य तत्कालीन समाज की समस्याओं का खुला दस्तावेज है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का अध्ययन करते हैं जिसमें पहली विधा उपन्यास है, जिसमें जीवन के सभी पक्षों, समाज के सभी वर्गों की वेदना की अभिव्यक्ति जीवंत रूप में दिखाई पड़ती है। तत्कालीन समाज अधिकांशतः अशिक्षित था, इसलिए वह शोषण का अधिक शिकार रहा है। प्रेमचंद ने देवस्थान रहस्य या पुजारी उपन्यास में जो 1905 में बनारस के आवाज़ खलक में प्रकाशित हुआ, इसमें हम धर्म और धर्म के नाम पर ठेकेदार पुजारियों द्वारा देवस्थानों में किए जाने वाले पापाचारों की तीखी कहानी पाते हैं। हिंदू समाज की सर्वाधिक पीड़ित विधवा नारी को केंद्र बिंदु बनाकर प्रेमचंद ने 1904 में प्रेमा उपन्यास लिखा, जिसमें विधवा जीवन की समस्याओं को उचित ढंग से हल करने के लिए उन्होंने अमृत राय पुत्र द्वारा विधवा पूर्णा, प्राणनाथ द्वारा विधवा रामकली व जीवननाथ द्वारा विधवा लक्ष्मी से विवाह का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी वर्ष 1906 में प्रेमचंद ने स्वयं विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके समाज में क्रांतिकारी कदम उठाया। सन 1907 में प्रेमचंद का एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी साप्ताहिक जमाना में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में भारतीय पराधीनता के मुख्य कारणों, राजपूत राजाओं में फूट, आपसी शत्रुता, राज दरबारों के षड्यंत्र जिनकी वजह से देश कमजोर हो रहा था का अनावरण किया है। साथ ही उपन्यास की कथा नारी के दुखद भाग्य पर केंद्रित है। इसमें मारवाड़ की रानी उमेदा अपने पति मारवाड़ के राजा मालदेव की बदचलनी से रूठकर आजीवन राजा से कोसों दूर रहती है, किंतु राजा की मृत्यु पर सामंतवादी कुप्रथा सती प्रथा के अनुसार पति की चिता पर जिंदा जल मरने को मजबूर होती है। उपन्यास में बहुपत्नी प्रथा के दुखद रूप का भी वर्णन है। 1918 में प्रकाशित सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद ने दिखाया कि राजनीतिक गुलामी से भी खराब सांस्कृतिक गुलामी है। वे उपन्यास की नायिका सुमन के पतन की प्रक्रिया से यह भी बताते हैं कि दोषपूर्ण सामंती व्यवस्था व पुरुषों के अत्याचारों से तंग आकर आर्थिक दृष्टि से पराधीन नारी वेश्या तक बनने को विवश हो जाती है। सन 1922 में प्रकाशित उपन्यास प्रेमाश्रम में जमींदारों और कारिंदों, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों की लूट खसोट और अत्याचारों को विस्तृत में चित्रित किया गया है। सन 1925 में प्रकाशित प्रेमचंद का सामाजिक उपन्यास निर्मला चांद पत्रिका में छपा था। यह भारतीय समाज की कुप्रथा, दहेज और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले अनमेल विवाह पर आधारित नारी जीवन के भयानक अंत का द्योतक एक छोटा सा उपन्यास है। विधवाओं के जीवन की करुण कहानी प्रेमचंद ने उपन्यास में प्रस्तुत की है। कल्याणी, निर्मला, सुधा आदि सभी विधवाएं जीवन का भार ढोती रहती हैं। 1927 में प्रकाशित प्रतिज्ञा उपन्यास भी विधवा नारी की समस्याओं का उद्घाटन करता है। तत्कालीन समाज की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कृषक जीवन की थी। उस समय छोटे किसानों के लिए कृषि करना बहुत दुष्कर कार्य था। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम व गोदान उपन्यास कृषकों के जीवन पर लिखे गए महाकाव्य हैं, जिसमें कृषकों की तीन पीढ़ियों को संघर्ष से गुजरते हुए दिखाया गया है। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रेमचंद ने ब्रिटिश सरकार और सामंती शक्तियों के दमनकारी रूप का भी चित्रण किया है। प्रेमचंद जन्म से ग्रामीण थे, किसानों की जिंदगी से उन्होंने गहरा साक्षात्कार किया था। जमींदारों, राय बहादुरों और सरकारों तथा सरकारी कर्मचारियों का मारा दीनहीन, अपनी जीविका के बल पर रोज मृत्यु से जूझता श्रमजीवी किसान संवेदना के रेसे रेसे में घुल गया था। गोदान उपन्यास का नायक होरी आजीवन संघर्ष करता रहा और अंत में संघर्ष करता करता ही मृत्यु को प्राप्त होता है। गोदान उपन्यास में किसानों की दशा का बड़ा दिल दहलाने वाला चित्र मिलता है। सारे गांव में ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत ना हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी हो, जो उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही है। जेठ के दिन है, खलियानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलियानों में ही तुलकर महाजनों व कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। गोदान में एक प्रसंग है कि लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी थी। गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा था, रूप और सोना दोनों लड़कियां पानी दे रही थी। होरी और धनिया बुआई में लगे थे, किंतु फिर भी भरपेट खाने को न मिलने पर धनिया का विद्रोही मन कहता है, सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मरना अच्छा है, कब तक पुआल में रात काटेंगे, और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर राहत होना जाएगा। धनिया के इस कथन से दुख की कितनी गहरी वेदना का परिचय मिलता है। पूस की एक रात कहानी भी एक छोटे किसान हल्कू की दारुण कथा का दस्तावेज है। गोदान उपन्यास यह स्पष्ट करता है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि समाज का सबसे पीड़ित वर्ग भी है। प्रेमचंद की कहानियां सदगति, ठाकुर का कुआं, कफन, घास वाली आदि में उन्होंने निम्न जातियों के साथ होने वाले अन्याय और सामाजिक भेदभाव को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उनके पात्रों के माध्यम से समाज की कठोर सच्चाई को उजागर किया है। तत्कालीन समाज में जातिगत भेदभाव चरम पर था। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान स्थान पर इस कड़वी सच्चाई को उद्घाटित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। धार्मिक पाखंड और नैतिकता के पतन का विरोध प्रेमचंद ने अपनी लगभग हर रचना में किया है। उन्होंने पाखंड और आडम्बरों का जमकर विरोध किया और समाज को विवेक और नैतिकता की राह पर चलने का संदेश दिया। पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी कहानियां मानवीय मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रयास करती दिखती है। मुंशी प्रेमचंद जितना सटीक व सजीव वर्णन शहरी जीवन का करते हैं, उससे भी अधिक उनकी भाषा में ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति दिखती है। वह सराहनीय है, उनका ग्रामीण जीवन का वर्णन देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे लंबे समय तक गांव में ना रहे हों। गांव की हर छोटी से छोटी घटना व पात्रों के अनुरूप शब्दों का चयन उनकी लेखनी को धनी बनाता है। अलगोजा, गोदान, पूस की एक राख, मुक्ति मार्ग, बलिदान, पंच परमेश्वर, घास वाली जैसी कहानियां ग्रामीण जीवन का इतना सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं, ऐसा लगता है कि मानो हम उस गांव में ही खड़े हों। मुंशी प्रेमचंद का गहरा अनुभव उनकी शैली में स्पष्ट हो जाता है। प्रेमचंद सही अर्थों में मानवतावादी लेखक थे। उनमें न केवल संतप्त मानवता के प्रति अथाह करुणा है, अपितु इस करुणा को सार्थक परिणतियों तक पहुंचाने वाली दृष्टिगत प्रखरता भी है। उनके साहित्य में यातनाग्रस्त समूची मानवता अर्थात नारी, अछूत, किसान और मजदूर वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, विद्रोह और विक्षोभ को लेकर सामने आई है। सुमन, पूर्णा, विरजन, निर्मला, चेतु और होरी इसी यातनाग्रस्त मानवता के प्रतीक हैं। शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, न्याय, हिंसा, परमोधर्म और ईदगाह जैसी कहानियां हिंदी हिंदू पाठकों के सामने सदियों से उसी के साथ जीने और सांस लेने वाले वर्ग मुसलमान की संवेदनाओं का संसार खोलती सी लगती हैं। प्रेमचंद की ईदगाह अपनी परिवेशगत विशेषता के कारण तो महत्वपूर्ण है ही, बाल मनोविज्ञान, मानवीय संवेदना और जीवनगत प्रश्नों के संकेतात्मक प्रसंगों के कारण भी से प्रेमचंद की विशिष्ट कहानियों में गिना जा सकता है। प्रेमचंद भारत के उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्हें इस विशाल भारतीय समाज के विविध वर्गों की व्यापक जानकारी थी। उनकी यह जानकारी मात्र किताब या सुनी सुनाई नहीं थी। प्रेमचंद की कहानियां आज भी समाज के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है, भारतीय समाज के यथार्थ को जागर करती है। उनकी कहानियां भारतीय समाज की सच्चाइयों, विशेषतः ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमताओं और मानवीय संवेदनाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। उनके साहित्य ने न केवल भारतीय समाज की सामाजिक संरचना पर प्रश्न उठाए, बल्कि समाज में बदलाव की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
0: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण कटारिया की वार्ता, जिसका विषय था भारतीय समाज के सटीक प्रतिबिंब के रूप में प्रेमचंद का साहित्य। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

दादा फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और बलवीर सिंह और साथियों की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। छायागीत कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। शब्द रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, माफ़ कीजिएगा, शब्द रचना है वर्मा मलिक की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने एक गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। नगमा निगार थे शैलेंद्र और मौसीकार थे शंकर जयकिशन। इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना समूह स्वर में देश गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:15 हुए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कार्यक्रम विवरण पर। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 9:30 पर होगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। रात 10 बजे प्रसारित होगी संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुगम संगीत कार्यक्रम का वक्त रहेगा शाम 7:32 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुलाम हुसैन साबरी और साथियों के स्वर में कव्वाली। गीत संध्या कार्यक्रम का वक्त रहेगा 8:15 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे 8:30 पर। इस फिल्म में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म दादा के कुछ गीत। वंदना कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 6:05 पर और श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण होगा कल सुबह 6:30 पर। गांधी कथा आप सुनेंगे कल सुबह 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल पूर्वाहन 7:05 पर जानकारी दी जाएगी बच्चे के लिए माँ का दूध विषय पर। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा गृह वाटिका के नए आयाम। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का वक्त रहेगा कल सुबह 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे भुवनेश गिरी के स्वर में रागनी। जागरूक श्रोता कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल पूर्वाहन 10:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त रहेगा कल पूर्वाहन 11:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे कल दोपहर 12 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा। घर संसार कार्यक्रम में वंदना राजपूत की वार्ता का विषय होगा जंगल और वन्य जीव संरक्षण में आम आदमी की भूमिका। इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 पर। शाम के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक

0: से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था। लोकसभा ने आज इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने कल विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और देश के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी गई। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअली जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहाँ मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनने का आह्वान किया।
1: आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8000 से

0: अधिक विवाद के मामलों में 2173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था को पूरे श्रावण मास में प्रभावी और निर्बाध रूप से बनाए रखे जाने का निर्देश दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सावन मास के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए धाम में 6 स्थानों पर जिग जैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिलभांडेश्वर, महामृत्युंजय तथा BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे सावन माह में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने आज बरेली में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
2: ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा सम्पन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
0: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम हुसैन हुसैन सावरी और साथियों की गाई कव्वाली।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कव्वाली। कलाकार हैं गुलाम हुसैन साबरी और साथी।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुनी कव्वाली। कलाकार थे गुलाम हुसैन साबरी और साथी। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अभी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान

की थी प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएम के सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएम के सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएम के सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों की एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव।
राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिकबराय, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है।
उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा।

0: जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20,00,000 बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जेंजी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:14 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या।

0: साजन का घर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में। बोल थे समीर के और धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है फिल्म निगाहें से मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गीत संध्या कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मोहब्बत फिल्म का गीत। समीर की शब्द रचना को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दादा के कुछ गीत। तो आइए, पहला गीत इस फिल्म से हमने लिया है मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्द रचना असद भोपाली की और संगीत है उषा खन्ना का।

मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र, दिलराज कौर और हेमलता की आवाज़ में आपने सुनाई गीत। बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने और संगीत था उषा खन्ना का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर को। शब्द रचना है महेंद्र।

दहलवी की, और संगीत है उषा खन्ना का। गीत संध्या एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म दादा के कुछ गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने सुने फिल्म दादा के कुछ गीत। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
4: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
7: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
2: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
9: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
10: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
11: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
12: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Radha Sabha, the discussion is underway on Public Examinations, Prevention of Unfair Means, Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
14: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, which was cleared by the Lok Sabha yesterday. The Lok Sabha today faced adjournment as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this disruption, question hour and zero hour in the lower house could not be taken up. In Rajya Sabha, both question hour and zero hour went on smoothly. With Suparna Saikia, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
13: Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CSS, to review the situation in the context of the ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance and counseling to seafarers and their families. Keeping in mind the requirements for the fertilizers for the Rabi season, the usage of alternate sources of fertilizers were discussed during the meeting. He also emphasized the usage of renewable energy sources in order to ensure energy independence. The United States and Iran exchanged fresh waves of missile strikes today, raising fears of a wider regional conflict and dimming hopes for a quick resolution. After a brief lull in hostilities, the renowned attacks have heightened concerns that the fighting could draw in more countries. Jordan said it intercepted 5 Iranian missiles for the second consecutive day. Kuwait reported that an Iranian strike hit a building belonging to a Chinese company in the country's north, killing one person and causing extensive damage. The latest exchange comes a day after the United States, in coordination with Saudi Arabia, carried out strikes on Iran-backed militias in Iraq, reportedly killing at least 20 fighters and 6 Iranian military advisers. Protests continued as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK today following a brutal crackdown by Pakistani forces on peaceful demonstrations earlier this week, leading to death of over 40 people. Clashes between peaceful protesters and security forces have intensified since Monday, particularly in Rawalkot and Mirpur, which have reported the highest number of casualties. Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has accused security forces of using lethal force against protesters. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal background will have to face action. The Home Department said that with regard to arrest or detentions, if already made in these cases, the process for reviewing the arrests and releasing the arrested persons will be undertaken expeditiously. It said that the Delhi government does not propose to take any further adverse action against the individuals involved in the protests, and the matter shall be treated as closed without any future proceedings on this account. It further noted that as of yesterday, 6 p.m., a total of 13 cases were registered by Delhi police in connection with the protests. The Supreme Court today directed the Delhi government to provide proper medical treatment to persons injured by the alleged use of pellet guns during recent students' protest in the national capital. The three-judge bench led by Chief Justice of India Surya Kant was hearing a plea alleging the use of metallic pellet guns on students protesting at Jantar Mantar and other parts of Delhi. During the hearing, the bench said that police rules permit the use of pellet guns in exceptional circumstances and said that unless the rules themselves are challenged, the use of such weapons cannot be considered illegal. Polling concluded peacefully for assembly by-elections to one seat each in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh today. Voting was held for Bakipur constituents in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. According to the Election Commission, voter turnout stood at over 34% in the Bakipur constituency when reports last came in. In the Manjalpur constituency, over 37% polling was recorded, while the Datia constituency registered over 71% voter turnout. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over northern states, Bihar, Northeast India, Konkan, Goa, Odisha, Telangana, Madhya Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. In Gujarat, severe weather warning has been issued across 13 districts including Ahmedabad, Anand, Surat and Navsari. Fishermen have been strictly advised not to venture into the sea till Saturday. Our correspondent reports that the state administration remains on alert and all precautionary measures have been taken. We have a report.
11: In view of the severe weather warning, Additional Chief Secretary Dr. Jayanti Ravi chaired a high-level review meeting at the State Emergency Operations Center to assess the administrative preparedness of the districts on high alert. District administration was instructed to operate 24/7 control rooms. Local authorities were also advised to deploy NDRF and SDRF teams in vulnerable low-lying areas as needed, while all the three wings of the Indian Army forces have been kept on standby for emergency relief and rescue operations. The state government has directed districts to ensure timely evacuation of residents from low-lying areas to shelter homes. Aparna Khunt, Akashvani News, Ahmedabad.
13: Odisha remains on high alert as floodwaters continue to swell the Mahanadi river system, with the season's biggest flood discharge expected to reach Mundali by this evening. Rescue, relief and surveillance have been intensified across the affected districts, while fresh rainfall warnings have raised concerns over the evolving flood situation. We have more from a correspondent.
10: The state government has intensified surveillance across downstream districts as the Mahanadi continues to rise due to heavy rainfall in its upper catchment. Revenue and Disaster Management Minister of Odisha, Suresh Pujari, today conducted an aerial survey of flood-hit areas in Jajpur, Bhadrak, Baleswar and Kendozhar districts to review rescue and relief operations. He said 100 blocks and 14 urban bodies of 20 districts and 7 lakh people have so far been affected in the flood. Authorities have urged people living in low-lying areas to remain alert as the flood situation continues to evolve. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
13: In Kerala, rain alert has been declared in all the 14 districts. Orange alert has been issued in 5 districts. In Chhattisgarh, heavy rainfall over the past 3 days has caused several rivers and streams to swell across various districts. Road connectivity is disrupted between many villages and district headquarters. In view of the rising water levels, the administration has advised people living along the river banks to remain alert. We have a report.
15: A portion of a bridge under construction across a river near Amli village in the Udanti area of Garyaban district was washed away due to the strong current. In Durg district, the water level of the Shivnath river is rising rapidly. The Mahanadi is also flowing above the danger level, leading to flooding in several riverside villages in Sakti, Arang and nearby areas. In Nizda village of Arang, SDRF team rescued 42 families trapped in the floodwaters. Normal life has also been affected by heavy rain in Narayanpur, Kondagaon, Kanker, Dantewada and Balod districts. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
13: Prime Minister Narendra Modi today met with the members of Parliament from Arunachal Pradesh and Nagaland at Parliament House and discussed the prevailing flood situation in both the states. In a social media post, the Prime Minister said the central government will keep working with the respective state governments to address the challenges. He also prayed for everyone's well-being and safety. The Kaveri Water Management Authority today held a meeting in New Delhi alongside representatives from government of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. During the meeting, the hydrometeorological conditions in the Kaveri Basin and the matter of quantum of flow to be realized at Biligundulu for the next 15 days was deliberated in detail. The authority further instructed Karnataka to ensure combined releases from the Krishna Raja Sagar and Kabini reservoirs to realize 3,500 cusecs at Biligundulu daily starting from the 29th of July. The death toll in Japan earthquake has risen to 34. The 7.1 magnitude quake struck Japan's Kumamoto Prefecture on Tuesday. At a disaster response headquarters meeting held this afternoon, officials said more than 9,400 people are currently staying at 406 evacuation shelters across the prefecture. The earthquake has also left approximately 79,700 households without water. Around 19,000 households remain without electricity as of this afternoon. Neeraj Chopra has qualified for the men's javelin finals in the Commonwealth Games in Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashvir Singh have also entered the finals. Earlier, India scripted history in para-athletics, securing a historic 1-2 finish in the men's 100 meters T47 final as Dilip Mahadu Gavit won the gold and Mohammad Basil M claimed silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. In Taipei Open Badminton, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George have progressed to the singles quarterfinals. However, Anmol Kharb and Aegis Pranoy crashed out in the second round matches today. Unnati Hooda defeated Tanya Hemant in an all-Indian tie. Tanvi Sharma defeated Indonesia's Thalita Wiryawau to reach the last 8. Devika Sihag beat Indonesia's Nikadek Dinda Pratiwi. Devika and Unnati will face each other in the top 8. Kiran George kept the Indian challenge alive in the men's singles defeating compatriot Tharun Mannapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
16: Aadab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا، البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں کل انتہائی تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی، راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا۔ اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو حاصل ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت، قومی شناخت اور ملک کی جد و جہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔
3: راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 صرف ایک ودھائی سنشودھن نہیں ہے، یہ بھارت کی آتما، سانسکرتک وراثت، راشٹریہ چیتنا اور سوتنترا سنگرام کے آدرشوں کے پرتی ہم سب کی پرتیبدھتا ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم، وکست بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم۔
16: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے بل پیش کیا۔ اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں، جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبا اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا، جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ایس کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त इकबाल का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है चंडीगढ़ से, और ये फरमाइश भेजी है हमें सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, और आपने फरमाइश की है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मंजिल से इस गीत की।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और आप सभी ने फरमाइश की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धरती से ये खूबसूरत सा नगमा।

0: वारियर्स दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है.
1: जी
0: मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए. प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट. तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है. मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं. तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे. हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में.
1: जी.
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है. अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS ने जीता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है. मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया. ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है क्या इंडिया लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है.
1: जी.
0: एक और इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा.
1: जरूर.
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है. मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा. अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है. उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर. तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी. और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं. नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है. तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जांपल है. तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपेरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है.
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए.
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है. इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स उसके साथ जुड़े हैं. वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है. कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही है और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है. करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है. UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है. और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए. पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं.
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं. तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है. अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव-गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218. आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा. ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनापुरी में हमने इंस्टॉल किया. इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं. तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं. अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है।
1: जी।
0: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती है। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है। तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है। अभी गाँव में तालाब है तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए, तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए ठीक है या कम है, वो आपको पता लग जाएगा। आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं, तो आपको रिजल्ट कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट अगले दिन तक ही मिल पाते हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो, कंसल्टेशन कर सकते हैं। और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी, और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
1: जी।
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गांवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गांव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3580 के लिए प्रयास कर रही है और इसी साल में 75 इसी तरह के गांव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी, थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने रत्नावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था। 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े, उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी हुआ कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही बी रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है। ये इंडिया में होने जा रहा है।
1: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है। और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं, हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी,
0: क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्रीवाइड

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: क्वेश्चन नंबर 21।
3: प्रश्न संख्या 121, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
4: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
1: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: थैंक यू सर। Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected...
1: Konstantinji, be specific about your question. Okay. So long question, then come to the specific question, please.
2: Okay.
1: Carry on.
2: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
5: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit-Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, the State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and Management Committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
6: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PBTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
5: Sir, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular law. Yes.
1: Also. Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
7: एनवायरमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
5: माननीय सभापति महोदय.

0: ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वॉज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absenteeism risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है, और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है,

0: भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे, इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना, इसलिए फ्लोर के द्वारा पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
0: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था, पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है ESIC के लाभार्थी है उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा, उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया ये मैं आपके द्वारा सदन को देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
3: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उसी इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है?

0: किया और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
4: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

0: इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशन दी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: हेड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार वीडीआर के द्वारा, वीडीएस के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
5: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो ऑन स्किल लेबर और स्किल लेबर है।

0: पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है डेली वेजेस है वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटक जेल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या? और कि ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए तभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124
4: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आनंद मिश्रा।
4: रक्षा निखिल खड़से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
5: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है?
6: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी फिफ्थ है जहां पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
3: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है और हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है। और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
7: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
6: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग हो रही है पूरे देश में और लगभग 600,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
8: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है उसके लिए। हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125 डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
9: क्वेश्चन नंबर 125।
4: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है, और ग मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
9: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए, और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए, और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
5: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार रहे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में फ्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा फायदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसके पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल के अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2,00,000 स्टार्टअप के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे
10: नए नौजवान।

0: युवती यह स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले ट्रेंच का पैसा लोग एंटरप्रेनर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेनर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में जो प्रवृत्त किया गया है इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिशर्स का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस से ना इक्वल वर्क के लिए ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक का काम बढ़ा है सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

0: से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में चार कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
4: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
5: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पे रख लिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, व्हाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम के साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी।
6: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में

0: सर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बताएंगे। धन्यवाद।
1: द हाउस स्टैंड्स अडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा

0: कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है, यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk. He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre. The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments.